一些留个老钱啊，地下轮子都下 H 六零八呀，安尼，门上装一番来，再跟爱他为了啊，宽度软了的地下轮上。

0: ni aizol fm za oi za point pasari atanga po an cho ani vo in ni som pakwa tharuk sang ni som ni paruk zirtop ni ya kan hun voi khatna chu kan lo chanta a min ngai la tu zong zong te chi bai kan buk chewa ni chatak mang turin tu sakna kan han ache u program puang tu hi walal nge izwali kani a control room engineer duty lal chan zuala ani vuina kan thu pui atan chuan finna chaber chu danaranin tumru tlatna hi ani finna chaber chu danaranin tumru tlatna hi ani dariat atang hian hindi tonga pathian fakna hla ngai thakna ho ngai thakna hun kan nei anga ti chuan vuin a kan last segment a zairi moi mizolap song mahin kan phun kan khar don ani tuna chuan hindi tonga pathian fakna hla lo ngai ho ang u
1: namaste shrotao hamare sath bane rehne ke liye dhanyawad अब आपको बेहतर सेवा प्रदान करने के हमारे प्रयास में हमारे साथ जुड़े रेज रेडियो ऑडियंस इंटरैक्टिव सर्वेक्षण और मूल्यांकन हमारे विशिष्ट मोबाइल ऐप के साथ मानद संरक्षक बने जहां आप उद्घोषकों को रेटिंग दे सकते हैं कार्यक्रमों की समीक्षा कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं बस हमारे आधिकारिक फेसबुक पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पंजीकरण करें आपकी सक्रिय प्रतिक्रिया हमें आकाशवाणी की विरासत को बेहतर बनाने और बनाए रखने में मदद करेगी तो सिर्फ सुने नहीं रेज मोबाइल ऐप के साथ बदलाव का नेतृत्व करें
0: हेलो नमस्ते सुप्रभात गुड मॉर्निंग आप सभी प्यारे दोस्तों को आप सभी हमारे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल एफएम जोई 100.7 दोस्तों और आज का हमारा सबसे पहला खंड है हिंदी का और वो है दोस्तों कोई हिंदी मूवी सॉन्ग नहीं दोस्तों हिंदी मूवी गीत नहीं हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए मसीही गीत यस ईशु मसीही ईशु मसीह मसीह के गीत आप सभी दोस्तों के लिए दोस्त यस और कल रात की नींद भी आप सभी की अच्छी गई होगी और आप सभी ने अच्छे से नींद ली होगी और आज की सुबह आप सभी ने बहुत ही अच्छे से शुरुआत की होगी यस और आप सभी हमारे साथ यस इस एफएम से 100.7 पर साथ देंगे हमें आपके भेजे गए संदेशों का इंतज़ार रहेगा दोस्तों यस और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे आपकी सेहत भी अच्छी होगी और आप सभी आज यस अपने अपने कामों में जाने के लिए भी आप रेडी हो रहे होंगे यस स्कूल के लिए कॉलेज के लिए ऑफिस के लिए खेतों में जाने के लिए दुकान यस और अपने अपने काम के सिलसिले में आप सभी जाने के लिए रेडी हो रहे होंगे तैयारियां कर रहे होंगे है ना दोस्तों तो यस आप अपने अपने काम करते रहिए साथ साथ हमें इस एफएम से 100.7 को भी सुनते रहिएगा ठीक है तो चलिए आज की सुबह आप सभी ने बहुत ही अच्छी वाली एक खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ शुरुआत अभी तक नहीं की है तो आप कर लीजिए क्योंकि यीशु मसीह हमें बहुत ही प्यार करते हैं वो चाहते हैं कि हम सच्चे रास्ते पर चले वो नहीं चाहते कि हम झूठी रास्तों पर चले यस उनका पालन करना चाहिए और आज यस उनको धन्यवाद देकर अपने इस दिन की शुरुआत आप सभी ने कर ली होगी है ना यस अगर अभी तक उनको धन्यवाद नहीं दी है इस खूबसूरत दिन के लिए खूबसूरत सुबह के लिए खूबसूरत एक नई जिंदगी के लिए दोस्तों यस तो चलिए यीशु मसीह को धन्यवाद देते हुए हम मसीही गीतों की तरफ चलते हैं और इस खंड में ना दोस्तों मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ हुंथर वेंग मसीह संगति जायपोल संफाई वेंगथांग पास्टर बियाल मसीह संगति और नेपाली क्रिश्चियन फेलोशिप के

आवाज़ों में गाया मसीही गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत मैं आपको सुनाऊंगी। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहूंगी हुंथर वेंग मसीह संगति जायपोल के गाए पवित्र आत्मा से। इस खंड की शुरुआत करते हैं। यस, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह एक पवित्र आत्मा है। पवित्र मतलब हमें भी एक, हमारा ये जो आत्मा है ना दोस्तों, पवित्र होना चाहिए। ठीक है, हमारा मतलब पूरे बदन, शरीर, दिमाग, ये सब हमें पवित्र रहना चाहिए। और पवित्र सोच, यस, बहुत जरूरी है। तो चलिए सुनते हैं हुंथर वेंग मसीह संगति जायपोल के गाए पवित्र आत्मा, मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को हुंथर वेंग मसीह संगति जायपोल के गाए गीत पवित्र आत्मा आप सभी को पसंद आया होगा। अब हम चलेंगे चंपाई वेंखंग पास्टर बियाल मसीह संगति के गाए मसीही गीत यस तू ही मेरा। यस हम सुनेंगे तू ही मेरा चंपाई वेंगलांग पास्टर बियाल मसीह संगति के गाए गीत। और यस, जैसे कि हमने अभी हमारे इस खंड का सबसे पहला गीत जो हुंथर वेंग मसीह संगति जायपोल के गाए गीत पवित्र आत्मा आप सभी को पसंद आया होगा। और इसी तरह दोस्तों, जी हाँ, हमें यीशु मसीह के यस पवित्र आत्मा हमारे पर बसने के लिए हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि उनकी आत्मा यस हमारे पर हमेशा बसी रहे। दोस्तों, अगर हम यीशु मसीह को छोड़ेंगे, उनके वचनों का पालन नहीं करेंगे, तो वो पवित्र आत्मा है ना दोस्तों, हमारे अंदर नहीं आ सकेगी। ठीक है, इसलिए हमें यीशु मसीह के पास रहना है, उनसे बातें करना है, उनसे प्रार्थना करना है ना दोस्तों। यस, अगर आप यीशु मसीह से बहुत ही ज़्यादा बातें करेंगे प्रार्थना के साथ, धन्यवाद के साथ, दोस्तों आपकी ज़िंदगी ना बहुत ही खुशियां और आनंद से बीतेगी। ठीक है, और आज हम चाहते हैं कि आप सभी का दिन एक बहुत ही शुभ हो, मंगलमय हो दोस्तों। यस, आप सभी के साथ, आप सभी के पास यस यीशु मसीह के प्यार पवित्र आत्मा हमेशा समाए रहे दोस्तों। तो चलिए चंपाई वेंगलांग पास्टर बियाल मसीह संगति के आवाज में गाया गीत सुनाने से पहले मैं आपके भेजे गए संदेश की तरफ चलना चाहूंगी। और इस खंड में मुझे सबसे पहला संदेश भेजा है मिंगमोइतेया की तरफ से। यस, मिंगमोइते ह्यान वाला नमस्ते ड्यूटी नॉमले अरोंतिया ओले मिंगमोइते नंगपो नमस्ते। ओ चुआन, आपको भी यस आज हमारे साथ यस, अगर आपको समय मिलेगा तो एंजॉय कीजिएगा एफएम और 100.7 के साथ। और मैं चाहती हूँ कि आपका दिन अच्छे से बीते। यस, और मेरे दोस्त अजामा की तरफ से संदेश आया है, हेलो आरजेवीएल नमस्ते सुप्रभात। यस, आपको भी सुप्रभात साम। ओम चान वो इन सू कन उचीपियन उचीपियान उचीपियन अचंग इन थू next song duty pui turne in tan le zoram remoy fm zo oi ngai la tu te le duty officer tan le control room a duty zong zong te le control room a duty zong zong te tan le utripia ngurdua ta pa mai lavin vl bo in duty nuam ule aronti ani ओले जाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके संदेश के लिए, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ जाम उचीपिया इना मैसेज उन्दे उदे मिरोन थोन खा कलोम तक जितनी अच्छा चू जिर तू छतक मिनरोन पे कंग

哎呀，你做梦啊！今天母的，今天母的，是讲的话，莫提破的哦，因为嘛两班不是要多卡，没老公母啊，刚爱你做一些甜美么子？昨天看的吧，现在是 really namaste 了的啊，可比 namaste 看的吧，一下不来多卡。Good boy, vi kung tia nguri sai lao ming moi tia jil zama omega sang tia le itan ka la ni aron ti ani ole lom om lutu ke chuan hi ten de das ji pa eng ate moya mun pui te yes unka sandesh bhocha he lekin dosto me inka sandesh is geet ke sunane ke baad padhna chahungi yes aur jaise ki maine kaha tha ki agla geet hum sunenge champai venkhang pastor bial masi sangati ke गाए गीत तू मेरा तू ही मेरा यस ईशु मसीह ही हमारे सब कुछ है यस वो हमारा साथ देते हैं अगर कोई भी हमारा साथ नहीं देना चाहते तो भी ईशु मसीह हमारा साथ देना चाहते हैं देते हैं दोस्तों यस कभी भी वो हमें छोड़ के नहीं जाते हैं इसलिए ना आप कभी भी हमें हमेशा अपने आप को एक मतलब एक उदास इंसान अकेलापन इंसान ऐसा महसूस मत कीजिए दोस्तों ठीक है यीशु मसीह ये नहीं चाहते हैं कि आप बुरे रास्ते पर चले ठीक है यस जैसे वो पवित्र है ना हमें भी पवित्र रहना चाहिए यस हमेशा मरते दम तक दोस्तों पवित्र रहना बहुत ही ज़रूरत है ठीक है बोलचाल में सोच में विचार में सब कुछ में दोस्तों एक पवित्र आत्मा हमारे अंदर समाये रहना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हम पूरी तरह एक पवित्र आत्मा की तरह जिए जिंदगी में ठीक है तो चलिए सुनते हैं ये गीत तू ही मेरा आप सभी के नाम

ये गीत आप सभी को भी पसंद आया होगा. यस, अनसाथियम हे मे द्रो. तो अब हम सुनेंगे नेपाली क्रिश्चियन फेलोशिप के गाए गीत ईसु अपने साथ. यह दिखलाओ. यस, तू ही परमेश्वर. और सचिंग दिखलाओ अनिहिमो. यस, तो फिलहाल गीत की तरफ चलने से पहले आपके संदेश की तरफ चलते हैं. हितेंद्र दास जी की तरफ से संदेश आया है. हितेंद्र दास जी ने हमें विश किया है गुड मॉर्निंग आरजे जी. यस, आपको भी गुड मॉर्निंग हितेंद्र दास जी. आप कैसे हैं? कल रात की नींद आप सभी आपकी कैसी गई? आपके परिवार, पति, पत्नी, बच्चे कैसे हैं? सब ठीक है ना? आज स्कूल जाएंगे या नहीं जाएंगे? तो चलिए, आपका परिवार हमेशा खुशियाँ और आनंद से भरता रहे. आप अपने पत्नी को इतना प्यार कीजिए कि आपको पूजे. यस, पति का फर्ज है अपने पत्नी बच्चों को प्यार देना, है ना? सही रास्ते पर सही रास्ता दिखाना, है ना हितेंद्र दास जी? यस. और अर्जे आ गई वो इन्हीं segment zong zong te tlong tak le fel taka zo fel thai nge tu rin tu sakna chi bei ka buk pho tang che ron ti ni wan fel chin tak em ge chan pa hi zo zuan mo ya mo ya mon pu hian rjvl ni thar chi bei duty nuam le aron ti ya ole nang po chi bei ni thar duom tak hi iman tlong takai man thina du sakna ka hlan che ni o nang po chuan meng moi te a vi kung te angak te pa te ta le nang ma ta na ron ti ani moi a mun pui alom om he mai. बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी के प्यार भरे संदेश के लिए और हमें इस FM से 100.7 को सुनने के लिए. और फिलहाल मतलब मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मतलब इस FM से 100.7 को ना दोस्तों, मतलब वे सुनते हैं हमें लेकिन संदेश नहीं भेजते. ऐसे बहुत ही हमारे दोस्त हैं जो इस FM से 100.7 को बहुत ही पसंद करते हैं, हमारी आवाज़ों को पसंद करते हैं, हमारे गीतों को पसंद करते हैं. तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है. यस, और हमें ये जान के भी यस बहुत अच्छा लगा कि वो हमें सुनते हैं बिना संदेश देते हुए. तो उन सभी लिसनर्स प्यारे श्रोताओं को हम दिल से शुक्रिया अदा कहते हैं हमें सुनने के लिए. यस, और इसी तरह हमेशा हमेशा यस सुनने के लिए हम उन्हें रिक्वेस्ट भी करते हैं. यस, लेकिन हम चाहते हैं कि वो भी हमें संदेश भेजे, हमसे बातें करे. तो चलिए हम अगले गीत की तरफ चलते हैं. और अगला गीत नेपाली क्रिश्चियन फेलोशिप के गाए गीत है. बहुत ही खूबसूरत गीत, बहुत ही खूबसूरत आवाज पे गाया गीत. और चलिए इस तरह आप सभी का दिन अच्छे से बीते दोस्तों. बहुत ही शुभ हो, मंगलमय हो. यस, यीशु मसीह का प्यार तो हमेशा जिंदगी भर रहता है. ठीक है, वो कभी भी हमें बुराई पर मतलब जाने के लिए नहीं कहते हैं, चलने के लिए नहीं कहते हैं. लेकिन हम इंसान इतने बुरे हैं ना कि उन्हें छोड़ के चले जाते हैं. तो मेरे दोस्तों, आप ऐसा मत कीजिए. हमेशा प्रभु यीशु मसीह के पास आप प्रार्थना कीजिए, उन्हें धन्यवाद दीजिए, आपको एक नई जिंदगी मिली है, है ना? यस, हमारे इस छोटी सी जिंदगी को ना दोस्तों, एक बहुत ही अच्छे से बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से हम जी सकते हैं बिना बुराई करते हुए दोस्तों. ठीक है, तो आज इस बहुत ही अच्छे दिन को दोस्तों, इस आज के अपने दिन को ना दोस्तों, एक बहुत ही पवित्र के साथ, यीशु मसीह के साथ आप बिताइए, वक्त बिताइए दोस्तों. आप में, आपके अंदर जो बुराई है ना, जो बुराई है उसे निकाल दीजिए. ठीक है, उसे फेंक दीजिए. ठीक है, आप बस प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर चलिए. ठीक है, आपको ढेर सारी खुशियां मिलेगी. ठीक है, तो चलिए सुनते हैं नेपाली क्रिश्चियन.

प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है। यस गीत जो गाया था नेपाली क्रिश्चियन फेलोशिप के गाए गीत थे दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत मसीही गीत। यस और जी हाँ दोस्तों, आप सभी भी जानते होंगे कि यीशु मसीह हमारी हमारे लिए इतना भला करते हैं कि हम उनको मतलब जानने के लिए भी कोशिश नहीं करते, और हम अपने ही मर्जी से हम खुद की जिंदगी जीते हैं। और बाद में जब हम उदास पड़ जाते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि हम गलत थे, तो फिर हम यीशु मसीह भगवान यस ईश्वर से हम मतलब माफी मांग लेते हैं। तो ऐसा अच्छी अच्छी बात नहीं है दोस्तों। आप जिंदगी में कभी भी अफसोस नहीं करने के लिए दोस्तों, आप ऐसा कदम मत उठाइए कि ईश्वर को वो चीज़ें पसंद ना हो, ऐसे ऐसा वाला कदम नहीं उठाना चाहिए। और हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान ने हमारे लिए यस अपने अपनी जान की कुर्बानी दी है, और उसी कुर्बानी को याद रख के हमें भी अपने दुखों को यस फेस करना चाहिए, ठीक है। यस हमारे दुखों को झेलना चाहिए उनके साथ, ठीक है। यस तो चलिए अब हम चलेंगे धन्यवाद के साथ गीत। यस गाया गीत धन्यवाद के साथ चंपाई वेंखंग मसीह संगति, चंपाई वेंखंग पास्टर बियाल मसीह संगति के यस गाए गीत धन्यवाद के साथ मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सभी को आरजे वीली की तरफ से गुड मॉर्निंग वंस अगेन। यस, फिर एक बार आप सभी को सुप्रभात। और आप सभी क्या कर रहे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे और अपने अपने काम के लिए निकल चुके होंगे, पहुंच चुके होंगे दोस्तों। और आप किसी किसी ने तो स्टार्ट भी कर लिया होगा, जैसे कि मेरे दोस्त जिलजामा। यस, उन्होंने तो शुरू ही कर लिया है अपना काम। तो आप भी कहीं पर भी जा रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, किसी काम के लिए जा रहे हैं शायद, और आप पहुंच भी चुके हैं अपने ऑफिस। तो यस, आप सभी अपने अपने काम अच्छे से करते रहिएगा, ठीक है? हम चाहते हैं कि आपका दिन यूं ही अच्छे से बीता रहे। और आप सभी को अपना ख्याल भी रखना है, ठीक है? अपने सेहत का ख्याल रखना है। इन लव इन इन को छत्ते पोखा गाय नी ओ चुआन ना देखा इ एंगे लव थोक वक वक लव उला इंट्रेस्ट न ते पोखा गाय पोई मो थौ खा गाय निया ओ जान मु छत्ते कत्यांग ते पोखा मो जान बिन रे वक वक ते खा लोग ना ओम लव निया रिरु ना ते खा नि लव मिंग वक वक गे। तो चलिए, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस एफएम जो 100.7 के हिंदी के दूसरे खंड में दोस्तों। और मैं हाजिर हूँ बहुत ही खूबसूरत गीतों के साथ, और मैं चाहती हूँ कि यस, आप सभी का समय अच्छे से बीते मेरे साथ आरजे वीएली के साथ। और आप सभी का संदेश आरजे वीएली इंतजार करेगी दोस्तों, क्योंकि आरजे वीएली के खंड पे अगर आप हमें संदेश नहीं भेजेंगे ना, तो हमारा ये जो सेगमेंट है ना दोस्तों, पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो चलिए मेरे साथ खुशी खुशी बहुत ही अच्छे से आनंद के साथ चलिए इस खंड की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं इस खंड का सबसे पहला गीत, तू तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा। आशा भोसले जी और किशोर कुमार जी की आवाज में गाया गीत मेरी तरफ से, इस खंड का सबसे पहला गीत आप सभी के नाम।

है वही दिल ने जिसे अपना कहा। ओरिजिनल वाला गीत लता मंगेशकर और आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में गाया गीत आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। यस, तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और मैं गीत सुनाऊंगी आप सभी दोस्तों को श्रेया घोषाल की आवाज में गाया गीत। और उससे पहले मैं चलना चाहूंगी पाएंगा का संदेश आया है पाएंगा हियन आरजे आंगे वो इना इथिल ती आ जाम हौलाविन इन रिन टोक तकिन इमा आ ती तुर ओम तिचु हंदी छुआई मेला थिल जोंग जोंग ही अति फुवेक थे

big lo ti ero ka shat pui chi ania o haran thi ni van dam chi the game o pa eng a ge chuan और दूसरा संदेश आया है मेरे लिए हितेंद्र दास जी की तरफ से. वंस अगेन गुड मॉर्निंग आरजे जी, नमस्कार. यस, आपको भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते हितेंद्र दास जी. और टुडेज आर वेरी हॉट. ओ एग्जैक्टली, यस, बट वी होप दैट कि आपका दिन आज बहुत ही अच्छे से बीते और हम आपको, आपके लिए कूल वाला जो आपको ठंडा कर दे वो हम सुनाएंगे आपको. आपको हमारे साथ 10:40 तक साथ देना है, ठीक है? अगर आप हमारा साथ देंगे ना तो आपको ठंड लग जाएगा, ठीक है? और एक बात मैं कहना चाहूंगी, कल हमारी दोस्त ने हमें एक संदेश भेजा और संदेश में हमें ये पता चला कि alom om ganti a chuan, yes, mi lo ngai thase tur po khan kan han request nga la ti chuan an tho na a te thil tin na kong tin re nga pathian mal som na lo chang ze se kan du thu sam ani. Oh chuan du sak na kan lan book ani, mi lo ngai thang nge mo ka shalawa na kina kan puang le zel tur anga ila usoma usoma. Oh aje ma moi mel sha dania an veng mi po ning kshia san lim da win nam da win lo hun lo mang ro se. Oh i lo mang don nia mi lo ngai tha ni chuan uso ma khan aje ma moi chian pa ni chumo. तो चलिए फिलहाल सुनाना चाहूंगी आप सभी प्यारे दोस्तों को श्रेया घोषाल की आवाज में गाया जादू है नशा है, बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक गीत. यस, आज हम ढेर सारी बातें करेंगे, यस, आरजे बेली के साथ. तो आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए, लग जाइए दोस्तों प्यार की दुनिया में मेरे साथ, आरजे बेली के साथ, ठीक है? हमने कहा था कि किसी को धोखा नहीं देना है, ठीक है? अगर आप दिखावे का रिश्ता रखेंगे ना किसी के साथ भी, वो ज्यादा देर नहीं रुकेगी, ठीक है? इसलिए तो माही बूम लो तूर. तो हमें क्या करना है, बस एक दूसरे के साथ प्यार करना है, ठीक है? तो चलिए सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत श्रेया घोषाल के आवाज में गाए गीत मेरी तरफ से, जादू है नशा है इस खंड का दूसरा गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम.

वेल दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को श्रेया घोषाल के आवाज में गाया गीत जादू है नशा है आप सभी को जरूर पसंद आ रहा होगा। यस, और हम चलेंगे आपके भेजे गए संदेश की तरफ। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी के साथ FM ZOY 100.7 पर हिंदी के खंड पे आपके साथ जुड़ी है आप सभी की दोस्त RJ VLE। यस, और यहाँ पर मेरे दोस्त जामा की तरफ से संदेश आया है। जामा यान, हेलो RJ VL VL कई मा चुआन एफ एम जो मोई रू नतान इम छोंग जो लू लेन अवांग लू लेन अवांग थीन लाइ ना वांग जान मुथे लौ कने गाय लवांग नेक्स्ट सॉन्ग उठी पियांगुर द्वा पातान ले दुर्गेश जी हितेंद्र दास असमतान ले मेंग्यांगते पएंग उमा लुआ मिशन वेंग ले पार पारी पु हाक्ते पाबिल कुथिर मोया मुन पुई नुरी साइलो तितान पो ओ तीन अपवांग तु मै म्यालविन अरुण दिनी नि ए जाम तुहे मोनी ओ हे आया मै ओ ओ तु पोनी से चाते लुंग एंगे मुथे लौते खतियांग खान नै कन फल लौ कन ओइ लौ कन ति तो खा ओ कल तो चुन कल तो आ अन कल ना ति मैयांग ओ इ अन अन अन नोम ना मुन खा नु आम दे जो ग नि ते रो उ तिन तिन मंगाइ ना खोंगा ओ आ इ लौ वान दुआइ अनि पो इन पोइ ति रे रेंग दु सु इतान छदे रुआ तिन आ ओम दो न नि ति खा मो लोरिंग तो प्ला। और लेकिन उससे पहले ना दोस्तों, आपको यस हम सबको एक अच्छा इंसान बनना है, ठीक है। अगर हम अच्छा इंसान अच्छे इंसान नहीं बनेंगे तो कोई नहीं मिलेगा आपको है कि नहीं इसलिए हम सभी को एक अच्छा इंसान बनना है। और यस

सबसे अच्छे अच्छे से रहना है, ठीक है। तो अब हम चलेंगे हमारे अगले गीत की तरफ। और यहाँ पर मैं आपको एक गीत सुनाना चाहूँगी। और गीत सुनाने से पहले दोस्तों, जिला रंथे हम आरजे ओ श्यादा नाम थे ले मैं अनिमो तक तक मो का पैसेंजर ते पु ngai ली रले पी पितलनी ते तान यान इप्रे तुर खा कलौ कलौ थांग वे ओ अरोंती नी ए बन लोमम एम एम पैसेंजर ते खालौ मो जुंग जुंग ला ओ जेला रेंथई लोम लुतुके मिलो ngai थ्लाथ्रीना त्लोंग तका हुनि लो मथेना दुसकन कलान सेनी। ओ यस, बहुत बहुत शुक्रिया जेला आपके संदेश के लिए और आपके पैसेंजर के लिए। जो अगला गीत मैं पेश करने वाली हूँ वो आपके लिए होगा, ठीक है। और लल दिन पुया ह्यान आरजे पे ले तुर खा नंग मा तान ले लो ngai थ्लाबे जोंग जोंग तान ले आरजे जोंग जोंग तान ले कछियान ते वेंग संग संगमी ते आरसी आरिन मोया त्लोंगा muan zawa walpuya rin moya walpuya achin a chin china loma te puya te tan ladin puya falcon vengla fm ngai sang mm tu rondini chachin hai mai lom om hai mai to chaliye hum saath saath he geet mein sunana chahungi aap sabhi pyare doston ko alka yagnik hariharan anuradha aur udit narayan ji ki awaaz mein gaaye geet hum saath saath he aap sabhi ke naam।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को हम साथ साथ है. आप सभी को गीत जरूर पसंद आया होगा. और दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि ना, जिस इंसान को एक सच्चा वाला प्यार मिलता है ना, वो इंसान बहुत ही खुश नसीब होते हैं. ठीक है, इसलिए अगर आप उनमें से हैं तो अपने आप को खुश नसीब समझिए और अपने जो प्यार है ना, जो आपके पास किसी किसी का साथ, मतलब किसी का प्यार आपके साथ जो है ना, उसे ना बांध के रखिए. ठीक है, यस, कभी जाने मत देना. ठीक है.

और हमेशा उनको बेहद प्यार कीजिए, बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए दोस्तों, क्योंकि ना ज़िंदगी में ना किसी को प्यार नहीं मिलता है, ठीक है? हर किसी को प्यार नहीं मिलता है। जिसको सच्चा वाला प्यार मिलता है ना, आप अपने आप को इतना खुश नसीब समझिए और उनको भी ढेर सारा प्यार देने के लिए कोशिश कीजिए, ठीक है? तो चलिए अगला गीत सुनाना चाहूंगी, दिल दिया गल्ला, आतिफ असलम की आवाज़ में गाएगी मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को कैसा लगा दिल दिया गल्ला? ये एक पंजाबी गीत है दोस्तों, बहुत ही प्यार भरा गीत। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को गीत पसंद आया होगा। यस, और दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। और यस, अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपके भेजे गए संदेश की

اعترافجلنا كان هون قيب. اه كان سيكنال تيانلي لو طا تو تو توس تو البيرن تيان ارشي فيل بو اني من نوابلي كي تو اي اولي نويري كشيا تيان كلون اوي ليا ليا مي انال انيا ريبلي لي تو كاي تان لي ارجي ماموي تان او رنديني البيرن تيان الوم ام تشين لي مي سيكنال بولي دي مي जो मैं गीत सुनाना चाहती थी वो मैं नहीं सुना पाऊंगी शायद. बोलता चीन है. ओ तो चलिए अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी प्यारे दोस्तों को. तो यस चलते हैं. ओ यस यस यस यस अभी सिग्नल आ गया है. मैं आपको ना चाहे जुबा से गीत सुनाना चाहूंगी. यस और चलिए मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये गीत जरूर पसंद आएगा. और मैं नहीं चाहती कि दोस्तों कि आपका समय अच्छे से ना बीते और आप सभी अपने अपने काम कर रहे होंगे और साथ साथ हमें सुन भी रहे होंगे. हमें अच्छा लगता है जब आपका संदेश आता है. तो ठीक है, तो एक प्यार भरा गीत चलिए सुनते हैं. चाहे जुबा से कुछ ना कहो ऐ मेरे हम सफर हम जुबा से अगर कुछ भी ना कहे ना तो सामने वाले को पता चल जाता है कि हमें उनसे कितना प्यार है ना दोस्तों. तो चलिए सुनते हैं ये चाहे जुबां से कुछ ना कहो ऐ मेरे हम सफर, मेरी तरफ से आप सभी के नाम.

चाहे जुबान से कुछ ना कहो ए मेरे हम सफ़र। आप सभी को गीत ज़रूर पसंद आया होगा, है ना दोस्तों, है कि नहीं? यस और नो, आप कहिए ना, हमें पसंद है, हमें पसंद नहीं है, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपके संदेशों का दोस्तों। यस और हमारा समय ख़त्म होने वाला है दोस्तों। ओ यस, आपको एक आखिरी गीत सुनाते हुए अलविदा कहने का समय ही आ चुका है। मैं तो यस, मैं समय को देख ही नहीं रही थी, तो पता नहीं कब समय इतना जल्दी ख़त्म हो जाता है। समय इतनी जल्दी जल्दी चले जाते हैं, वक्त का कुछ पता ही नहीं चलता है ना दोस्तों। यस, क्योंकि इस FM 100.7 पर मेरे अपने खंड पे मैं बहुत एन्जॉय करती हूँ आपके साथ, आप सभी के साथ आपसे बातें करते हुए, इसलिए मैं टाइम को ना इग्नोर कर देती हूँ। लेकिन आप किसी को इग्नोर मत कीजिए, कि सब सबके साथ, किसी के साथ भी आप प्यार कीजिए, रेस्पेक्ट कीजिए एक दूसरे का, ठीक है? तो चलिए मैं चलती हूँ इस आखिरी गीत को लेकर, और मैं वापस आऊँगी दोस्तों 12 बजे, ठीक है? यस, 12 बजे मैं हिंदी के खंड को लेकर दोबारा हाजिर होंगी। तो आप सभी अपना ख्याल रखना, ठीक है? अपना काम अच्छे से करना, ठीक है? यस, आप सभी मेरे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल FM 100.7, और हिंदी के खंड पे आपके साथ जुड़ी है आप सभी की दोस्त राजे वीएली। तो दोस्तों, तू जो मिला गीत से मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगी, ठीक है? तो चलिए, खुश रहना, अपना ख्याल रखना, फिर मिलते हैं, आप सभी का इंतजार रहेगा। डार सोम पत्नी आ, ओ मैं आऊंगी वापस 12 बजे, तब तक के लिए दोस्तों इजाजत दीजिए, और ये आखिरी गीत तू जो मिला आप सभी के नाम।

हेलो, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर आप सभी प्यारे दोस्तों को आरजे वेले की तरफ से। और आप सभी हमारे साथ फिर एक बार सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल एफएम जोई 100.7। दोस्तों, और आप का दिन कैसे बीत रहा है? दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का दिन अच्छे से बीत रहा होगा। और आप कैसे हैं दोस्तों? यस, मेरे ख्याल से आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, है ना? और आपके भेजे गए संदेशों का हमें इंतजार रहेगा, ठीक है? यस। और मैं हाजिर हूँ बहुत ही खूबसूरत गीतों के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को इस खंड का गीत दोबारा जरूर पसंद आएगा दोस्तों। यस। और आप सभी अपने अपने काम अच्छे से कर रहे होंगे, तो चलिए अपने इस खंड की शुरुआत करते हैं। और बहुत ही खूबसूरत गीत सुनाना चाहूंगी, इश्क वाला लव, मेरी तरफ से। आप सभी को जरूर पसंद आएगा दोस्तों। और गीत सुनाने से पहले मैं एक बात आप सभी से कहना चाहूंगी कि हर चीज वक्त पर ही खूबसूरत लगती है, ठीक है? हर चीज वक्त पर ही खूबसूरत लगती है। ना वक्त से पहले कुछ अपना होता है, ना वक्त के बाद कुछ ठहर पाता है। इसलिए सब्र रखना सीखो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए लिखा है वो एक दिन जरूर मिलेगा। और जब मिलेगा ना दोस्तों, बेहद बेहतरीन मिलेगा, ठीक है? इसलिए पथ्यानीन कंतान छदेव उमई मो मिन मिनवा सकवे कनी। और इसके लिए हमें थोड़ा सा सब्र करना है, पेशेंट ने कंगाए नहीं मो ना फन फन अंगाए हुन छा मोटोर चुआन, है कि नहीं? तो चलिए सुनते हैं मेरी तरफ से इस खंड का सबसे पहला गीत, इश्क वाला लव, आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को इश्क वाला लव, बहुत ही खूबसूरत गीत आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। तो जैसे कि हमने कहा था स्टार्टिंग में, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। ठीक है, मतलब सब्र का फल मीठा होता है। आपको इंतजार करना है, आपको पेशेंट रखनी है, ठीक है, सही वक्त का। ओ हुन छा कन खा गाय तीना नीचू तू ना खान हुन छलाउ इतों मई थे अमाइ रो चू पथिया नि इतान थिल छद अंगाई तो अरुआ दोन अरुआ तनी ती खा इचियाना लौ हा फन फन खाई ती तुर नि ओ बस खुद पर यकीन रखो, दुआओं को साथ रखो दोस्तों, और वक्त को अपना काम करने दो। ठीक है, यस, वक्त को अपना काम करने दो। हुन खा हुन खमो ई ना थो तीर तो प्रो नाक तो तोड़ती ना नीचू कहीं नी पो ओ कहीं कहीं गई पो ही मो नीति कांगे ओ के तो नंग ती दिखा कन्हन गई तो आता नीचू मो मसे पेशेंट कन्ने यंगा अहुना तक चुआन कंतों बेंगे तुरा बेसे फतंग ओ। और तो चलिए, मैं चलना चाहूंगी आपके भेजे गए संदेश की तरफ। और यस, गीत सुनाने से पहले आपको एक यस आपके भेजे गए संदेश की तरफ चलना चाहूंगी जल्दी से। यहाँ पर हितेंद्र दास जी की तरफ से संदेश आया है। हितेंद्र दास जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड आफ्टरनून आपको भी, और नमस्ते आपको भी। हितेंद्र दास जी, आपको हमें सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहती हूँ कि आपका दिन अच्छे से बीते, और आपका समय अच्छे से बीत रहा होगा ना हमसे बातें करते हुए, हमें सुनकर। और मेरे दोस्त जा महियान, हेलो आर जे वी एल सुनहुन मनवा मरंतिया ओले नंग पोले ओ जाम नेक्स्ट सॉन्ग इड्यूटी पुई ने इंता ने उठी पियांगु दुआ तपा तान ले खाकते पा बिल को थिर दुर्गेश जी ले हितेंद्र दास असम मे लविन रोंती नि मिदंग हौ हि चु कल छ थ्या मा मसे उठी पि आ खेर खछु थन सग बे ngai लौ जाम निमिन लमा निमिन लमा मिन सई सन्ने ए।

भाई मेंगमोई ते यान वाला गुड आफ्टरनून और रंती बोका ओले मेंगमोई ते नपो गुड आफ्टरनून ओ चान उसोमा अमी कलम दिकेम ओ उसोमा ने न चंग इन मैसेज कर दोगा चान मारी लम पंग अमी मो आजे मामोई चान पाम आजे अनि हैं आजे वीली ओ ले नुई मोई तक के शेले थे ता अबाग जो सही दो लो मैं यंग ड्यूटी नाम ले रंटी नी अलो मम है मैं सो मिलोंगा खजियार ओ और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हिंदी के गीत पसंद आते होंगे है ना यस जब आपको मौका मिलेगा वक्त मिलेगा हमसे बातें करने के लिए आप बेशक कीजिएगा हम आपका इंतजार करेंगे FM ZO 100.7 पर ठीक है यस और हम चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें अतिलाई पोइन लिम रेंगला चौन पथियान मल सोमनतम तखा लोदोंग जेला चौन इलुंग ऐ तखा कंथल दोन लोनिया ओ तो चलिए आप सभी का दिन अच्छे से बीता रहे यूं ही और दिन के 12 बज चुके हैं आप सभी अपने अपने कामों में थोड़े से फ्री होने वाले होंगे और आप सभी चाय वगैरह वगैरह पीने वाले होंगे है ना दोस्तों तो चलिए आप जो भी करेंगे अच्छे से करते रहेंगे और हम भी चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ और अगला गीत मैं सुनाना चाहूँगी साधना सरगम और उदित नारायण के आवाज़ में गाया गीत सब गाते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत आप सभी के नाम और स्पेशली उसोमा हमारे आज के बहुत ही स्पेशल लिसनर्स उसोमा के लिए ये अगला गीत और आप सभी के लिए मेरी तरफ से

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को अभी जो हमने गीत सुना था गूंजी सी है, बहुत ही खूबसूरत गीत साधना सरगम और उदित नारायण जी की आवाज़ में गाया गीत आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों, आज पता नहीं क्यों हमारा ये जो सिग्नल है ना, बहुत ही खराब है। बीच बीच में गाने रुक रहे हैं। तो चलिए, हमारा कोई दोष नहीं है, सिग्नल का दोष है। और अब हम चलेंगे अगले गीत की तरफ। और अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी प्यारे दोस्तों को। यस, कुछ कुछ होता है गीत सुनते हैं, हम बहुत दिनों से ये गीत नहीं सुन रहे हैं। और चलिए, मेरे दोस्त जामा या नलाओ टाइप जो लवा टाइप गीत सुनाने से पहले मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप सभी के पास फर्स्ट लव तो किसी के साथ भी होगा, है ना? फर्स्ट लव का तो इन नहीं वे कंती रहो। तो फर्स्ट लव से एक बात मेरे दिमाग में ये होता है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के बस फीलिंग से भरा हुआ है ना दोस्तों। शायद वो कभी तुम्हारा ना बने, पर उसकी यादें हमेशा तुम्हारी रहेगी। और फर्स्ट लव हमें सिखाता है कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं होता, वो छोटी छोटी बातें, वो हंसी, वो बेकरार सी फीलिंग, सैड याद रहता है। टाइम के साथ लोग बदल जाते हैं, पर फर्स्ट लव एक एहसास कभी नहीं बदलता है ना दोस्तों। यस। तो चलिए, आप सभी के पास भी फर्स्ट लव होगा और आपका फर्स्ट लव कभी भी मरा नहीं होगा ना दोस्तों। यस। तो चलिए, प्यार की तरफ, प्यार के मोड़ की तरफ चलते हैं। मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी प्यारे दोस्तों को कुछ कुछ होता है मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को कुछ कुछ होता है गीत जरूर पसंद आया होगा। और फर्स्ट लव के बारे में कहने के बाद आप भी अपने फर्स्ट लव को मिस कर रहे होंगे, है कि नहीं दोस्तों? यस, इस दुनिया में ना ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके पास फर्स्ट लव ना हो, ठीक है? ये यहाँ मेरे साथ बैठी हमारी दोस्त आरजे आफी के पास भी फर्स्ट लव जरूर होगा। यस, तो आप सभी अपने फर्स्ट लव को मिस कर रहे होंगे ना? मिस कीजिए, क्योंकि मिस करना कोई बुरी बात नहीं है, किसी को याद करना कोई बुरी बात नहीं है, है ना दोस्तों? यस। और अब हम चलेंगे अगले गीत की तरफ, लेकिन दोस्तों अगला गीत सुनाने से पहले मैं आपके भेजे गए संदेश की तरफ चलना चाहूंगी। और संदेश है मेरे दोस्त जामा की तरफ से। जामा ह्यान तिहानी ले लो RJV uchipi akhan aswe sa lo lao ze o itana nikina hun lo om tur atan zirlai zirlai cha zirlai cha nu chia zok che alom o lung oi lawa lam mai lavin lom le ang che o de o bele che o ra zam ani pei pei chu itan chuan eng thil chalo ma azir tir top lawang che chu chu ka chiang Anje ma moi te chan pa iti zia chin pu soma hi ka sa huat lai aron khoitlat in ka sia a achunga eng tia malak zui tur nge o aron zei vel chuat achunga malak dan tur cha ngei twa lok po a cha mai thei ani aron ti vel ani o u soma khana lo sia ngem o zamaron soi vel hi जामा मैसेज वेली। तो फिलहाल चलिए इसी तरह हम सभी एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपने जगह पर, तो हम भी चलते हैं दोस्तों अगले गीत की तरफ। और चलिए सुनाते हैं आपको तेरे इश्क में नाचेंगे मेरी तरफ से आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए।

वेल दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये गीत डम डम डुबा डुबा, बहुत ही खूबसूरत गीत, आप सभी को पसंद आ रहा होगा। तेरे इश्क में नाचेंगे। कभी कभी प्यार जब हमें धोखा देते हैं तो उनके इश्क में हमें ना नाचना चाहिए, क्योंकि हम उनसे बहुत ही बेशक प्यार करते हैं, लेकिन वो हमें आगे चलकर धोखा दे देते हैं तो बहुत बुरा लगता है ना दोस्तों। इसलिए उन इश्क में आप मत रोइए, बस नाचिए उन इश्क में, ठीक है? यस, टापू लव द्रुखतिया मंगाई ना देर वांग खान मो। और चलिए अगले गीत की तरफ चलते हैं। और अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी प्यारे दोस्तों को। यस, वैसे भी हमारा समय खत्म होने वाला है, हमारा समय 12:40 तक का है दोस्तों। यस, और मैं अगला गीत सुनाना चाहूंगी मोहित चौहान की आवाज में गाया गीत, तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा। कभी कभी हम उन सारे चीजों को समझ जाते हैं कि वो सच है, लेकिन बाद में जब पता चलता है तो वो शब्द, वो लाइन हमारे लिए है ही नहीं, है ना दोस्तों। और यहाँ पर बहुत ही स्पेशल संदेश आया है, उसो मने न चयन उसो महियान अजवी एल जा महियान दिन मुन जा महियान अजवील जामा हिया नदिन मुन करोंति देर थोंग जामा दिन मुन करोंति देर थोंग देव आ इन श्या चुआन लौचंग न सरोसे अरुंदी जामी लौ श्या एम सो मन मो तु त्या चन लौ ती चे न्याओ अनुआम छौले दो ने ती चुआन फैंस पखत गन पुंग छौले ता वासे अमो शिलोंग देखी अनरे थे खो मई और फिटनेस बॉय लाही चंपाई लंपंग बोही कन रे ले इन कश अमर चु खई मना बो ओमिला गंदम छांग तुरा का बे सैया लव इन एनकोल छपे कुला लव हिम ए मे मूला स्वान लव लुंगाई लव उला इन तान छदेव थिल ओ रुआ सकिन इनोम जेल दोन तिया खान लौ च्यांग एम एम उला थिल छा लौ ती उला मिटे ताना मल सोम न तिखा लौ नि जेल बोक उला कदोम न मुन न पियांग आ खान त्रो के मा पो से त्यांग पोकिन। तो चलिए सुनते हैं तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा, मेरी तरफ से आप सभी के नाम और स्पेशली उत्सव मतान।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को गीत पसंद आ रहा होगा और हमारा समय भी ख़त्म होने वाला है दोस्तों, क्या करें। आपको एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट बताना चाहूँगी कि एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट मिजोरम नोया ड्राइवर के वी के अथोक्टोर मिपन्नी लाकनीदोना हे ना दिलदु चुआन निसोम पथुम थसरी साख निसोम नि परुखलेंग डायरेक्टोरेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के वी के ब्रांच आ ऑफिस हुन छुंगिन दिल ना फॉर्म लाक थे अनी। तो हमारा समय खत्म हो गया है, तो इसलिए आप सभी से एक गीत के साथ अलविदा कहना चाहूंगी दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए। और जाते जाते मेरे दोस्त जामा की तरफ से जो संदेश आया है वो मैं पढ़ना चाहूंगी। जामा हियान आज भी पुसो मखा हे ही लौ श्रेते से आर्तल दान सिखत ओम ले नेम ले ती ही इंगे एक ती थे अलश्या अंगचू अरुण थी अनी मेरे दोस्तों, मेरे जाने का समय आ चुका है, लेकिन मैं वापस आऊंगी दोबारा 1:50 पर। ओ दार खतले मित सुमगा कलो किरदोन नी ओ मेरे अपने लास्ट आखिरी खंड को लेकर। और जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूँगी कि सुकून के बारे में, सुकून मो थमुआना तुए मोनी ते बुला कन ओमा कन हे कन था या मन गोई गोई हिमो कतियां खान। तो कहते हैं कि उसे छूना नहीं, बस उसे देखना सुकून है, ठीक है। दूर रहकर भी उसका साथ देना सुकून है। ना कोई चीज है उसे पाने की, ना कोई जिद है उसे पाने की, ना कोई दवा है, उसकी एक झलक में ही खो जाना सुकून है। वो सामने हो तो दिल और भी खुश हो जाए, बिना कुछ कहे उसका समझना सुकून, समझना सुकून है। ना रिश्तों का नाम है, ना कोई बंधन है, बस यूं ही उसे चाहना ही सुकून है। तो ये आखिरी गीत मेरी तरफ से आप सभी के लिए, और मिलते हैं 1:50 पर। तो आरजे वीले को इजाजत दीजिए दोस्तों, ये आखिरी गीत आप सभी के नाम।

हेलो, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर आप सभी प्यारे दोस्तों को फिर एक बार आरजे वील की तरफ से। और आप सभी हमारे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल एफएम से 100.7। दोस्तों और दोस्तों, आप सभी का दिन कैसे बीत रहा है? और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज के हमारे हिंदी के आखिरी खंड पे। दोस्तों, इसके बाद तो मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी और पता नहीं कब फिर से दोबारा इस एफएम से 100.7 पर मुलाकात हो। दोस्तों, तो आइए, हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा, आपके प्यारे प्यारे संदेशों का। दोस्तों, और आप सभी ने चाय वगैरह वगैरह पी लिया होगा। तो हम भी इस खंड की शुरुआत करते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ, और सुनाना चाहूंगी आप सभी को तेरे बिन मेरी तरफ से सुनिधि चौहान और कुणाल गांजावाला की आवाज में गाएगी मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को तेरे बिन कहीं दिल ना लगे। दोस्तों, मोहित चौहान और सुनिधि चौहान की आवाज में गाया गीत आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों, अब हम चलेंगे बहुत ही खूबसूरत गीत की तरफ। और दोस्तों, मैं यस आपके संदेश भी अभी रुकी हुई है, लेकिन आप

है वो मैं आप सभी को यस आप सभी के सामने सुनाना चाहूंगी. और आज तो आकाशवाणी स्टूडियो पर हमारे एमपी, हमारे न्यू एमपी आए हैं और हमने उनके साथ फोटो भी लिया, हमें बहुत अच्छा लगा. एमपी थर कारण कलमो वही ना सान ओ थलाक पुई मस बेट पोल द पोकनी माना कनी थी थे रूम रूम तानी चू. और तो चलिए यहाँ पर मेरे दोस्त जामा की तरफ से जो संदेश आया है वो मैं पढ़ना चाहूंगी. जामा यान RJVL इवंगई ओम नुब नुब दोन सी एम ओ तिखत सुआन कतान हियान एफ एम सा ओरी मोई रू ना इलाउ कीर हुन तूर लुम लुम ते थीर यांग इन कथीर ले वाउ वाउ दोन अनि ही रुआंग तकिन हो अंग से ओ इप्ले ले तूर खा पो सामा मते नुपा मिशन विंग थंगमी तान ले इतान सियाल पिक रिया विन ओर अन ती अनि ओले जाम के पो कंगाई दोन लु तक से ओम कंगाई वेक दोन से ओ सुआन ओ. तो चलिए फिलहाल सुनते हैं अगला गीत, ऐसा क्यों होता है बार बार, मेरी तरफ से आप सभी के नाम.

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को अलका याग्निक के बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में गाया गीत ऐसा क्यों होता है बार बार। यस, हम भी नहीं जानते कि ऐसा क्यों होता है बार बार। यस, जब हमें कुछ एहसास हो जाता है तो हम ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है बार बार, और कुछ नई फीलिंग जब आती है तो भी हम उस वक्त सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है हम पे बार बार, है ना दोस्तों। तो चलिए, आप सभी को एक गीत के साथ अलविदा कहने का, सचमुच का समय आ चुका है। क्या करें दोस्तों, हमारे हमारे पास बहुत ही कम समय रहता

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। फ्रांस दौरे के दौरान उन्होंने एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लिया। इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर नीस फ्रांस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया, जिसमें भारत फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए। स्लोवाकिया यात्रा के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवांशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उपस्थित थे। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने अधिकारियों से अपील की कि पूर्ण उन्मूलन के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।
1: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाना और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसिलिंग करना, मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहा है। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है।
2: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध

लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि ये कदम कानून के अनुरूप था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति तेजस कारिया ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के धारा 69A के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है। भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हाय दोस्तों, आपके आरजुमान पी 108.7 एफएम जोवोई में आप सबके साथ दोस्तों आया हिंदी गीतों का आनंद लेने का। मैं कहना चाहूंगी, सपनों की उड़ान वही भरते हैं जिनके पंख हौसलों से बने होते हैं। ठीक है ना दोस्तों? दोस्त हु डेयर टू ड्रीम आर दोस वंस द वंस लाइक हुज विंग्स आर मेड ऑफ करेज। यानी कि करेज यानी कि हौसला जो है बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, ये मैं कहना चाहूँगी। सफल और असफलता भी इसी पर ही कहीं हद तक निर्भर है, और साथ ही साथ क्या है, मेहनत की ज़रूरत होती है। चलना चाहूँगी मैं हिंदी गीत की ओर। सबसे पहले गीत के तौर पे आप सबके लिए मैं लाई हूँ नहीं लगदा, ये जो है नोटबुक 3 फिल्म का बहुत ही मशहूर गीत आप सबके लिए। और इसी तरह मैं आप सबसे कहना चाहूँगी, चाहो तो आप अपने मन की बात SMS द्वारा भेज सकते हैं, और इसी तरह आपके SMS के साथ साथ हम गीतों की ओर चलते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलना चाहूँगी गीत की ओर। ये रहा आप सबके लिए, लीजिएगा आनंद।

वाकई में बहुत बहुत सुंदर गीत था दोस्तों। मैं कहना चाहूंगी आप सबसे कि उन लोगों से ज्यादा खूबसूरत कुछ भी नहीं हो सकता जो स्वयं आगे बढ़कर दूसरों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए प्रयास करते हैं। आप और हम किस कैटेगरी में हैं? दूसरों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए क्या हम प्रयास करते हैं या नहीं? आइए हम अपने आप को सवाल करते हैं और इसी तरह से यही आइए जानते हैं कि सबसे ज्यादा खूबसूरत बात है। ठीक है दोस्तों, चलना चाहूंगी आपके SMS की ओर। यहाँ सबसे पहला SMS जो है केवाला की ओर से आया है। इन्होंने कहा है, फर्नो मोन पुए लल गई ओम नो रंते ने ए खे उना पाही गई ओम ले मे ओ स्वान। यहाँ पे किनका SMS है मैं देखना चाहूंगी। और हाँ, अगला SMS यहाँ पे है पिंग मोइते की ओर से केवाला। तुई तका लोंगाई छतोरिन कन गई छाक जोंग सोंग ते तान करों तिया तो मिन लो छेन पुई गे करिंग बोक मिन गाई बोक मो नंग पुई गई ओ मैं मे मनी ते खेलो छदोन न्या ओ। हाँ, यहाँ पे पिंग मोइते की ओर से इन्होंने कहा है, मामोन पुई नमस्ते, ड्यूटी नोमले कहा है इन्होंने। सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपको भी नमस्ते एंड नंगपो मिंग मोई ते हुन मन नाम ओ चान गई थाक तो जोंग जोंग तान हुन मिन लो मन पुई चर चर ले अंग ती बेसे न नेन। पीसी जेसिका की ओर से यहाँ पे अगला SMS जो है वो मन पुई लाई लम ची बाई हुन मन नाम ओ नेक्स्ट खा ड्यूटी पुई तेनेन इन तान ओ चुआन ड्यूटी नुआम बोकले कह करके इन्होंने हमें SMS दिया है। पीसी जेसिका ये SMS कान मोवेले लो मैं इसे कवन लोम एम ओ चुआन इन तो ठेंगे मिन लो गाई छचर चर ला इला दूपो हकन ति छुआक लो वांग ते कन सोई थे लो ओ है इरोन लन मना कन ति छुआक ने ये बोकांग ते खलो रिंग तप रो। और यहाँ पे जेलजाम की ओर से RJVL ओ रोंते दे ये मो टिपल रोंते रोन नुइन समय आ चानिन ओ RJV एली जमो कन थेंग हिल थेंग गंग लो नि गई ओम बक नोप नोप ते इन दे मो कन चान नो हे RJ मा मोन पुइ नमस्ते नमस्ते नमस्ते रोंते आपको भी नमस्ते चान कन व इन तुम खात वे इ पसल फनाव ते अंदम तलांग मो रोंते आ कंगाई चे मोन पुइ रोंते ने ओके ओ कन दम तलांग लोम पथियान जारा नंग पुइ गई ओम एम एम ए ओ चान इ रे रे लुतुका karon ti ni ni e kar sa khan kan all khap me ni chuwang chanin kanin tong khat lo thai lo ta ni mo voin tlaya i playlist mi zong zong te rj te te e rj folina e chuan tan le apwang to ka do mm rj ma mon pui tan si sen tia tlekin no chu churwal ero chuan ka rani ji o poi mo khat tan le selbik riawin or tia ron nui char char bok ta ni heta hianin mo o selbik em em in irani ji rjv elika thengil mai phal te lo mai o kan thengil thailo reng reng janin duty nom le ngai om nu ron ti ni okay kawan lom te lul em jelal sama to min lo thlen pui turin kan som hal hal bok chini sela chalna chahungi agle geet ki aur agla geet aap sabke liye bahut बहुत सुंदर रहेगा दोस्तों, आप यही समझ लीजिएगा। ठीक है, आवन जावन गीत है ये, आप सबके लिए मैं डेडिकेट करना चाहूंगी। ये रहा गीत।

दोस्तों, मैं जाना चाहूंगी आपके एसएमएस की ओर। यहाँ एसएमएस आए हैं केवल की ओर से, इन्होंने क्या कहा है देखना चाहूंगी। फर्नु मोन पी मिंग मोइते अल्ले और आ

तो ही तो गीत वाकई में मुझे तो बहुत पसंद आए दोस्तों, आप सबको भी पसंद आए होंगे मुझे ऐसा ही लग रहा है। आप भी बताइएगा कि सेगमेंट कैसा लगा। यहाँ पे कई SMS आए हैं, मैं जाना चाहूँगी SMS की। और दोस्तों SMS जो है कि वाला के आगते पाबिल खतियर को की ओर से, इन्होंने कहा आरजे मोनपुरी नमस्ते लपले ले तुरखा मिंगमोते अ गुड बॉय ओमेगा सांगते अंगूरी साइलो इतान कलाने फ्रॉम खाकते अ पाबिल खथिर याना रोंते ने चोन खाकते अ पाबिल खथिर इतान करोंते ले दे ते तकिन लोंगाई सदन ने ओ मिन लोंगाई थाती कशिया आ एसएस ते मिरोन थना कलोम एम एम ने एंड यहां के वाला की ओर से मिंगमोते एनपीसी जेसिका यंगाई लु तो रेडियो बैटरी इन अजब लवा तो चुत चुत मई रंते रुई नसल तो कन्या एंग पोनी से और थन जेल रो के वाला तुई तक निगाई थे जेल दोन ने ओ SMS ते लो गाई थाला ची एकदम खानिन ते खानिन नि रंतिले मौ जेल दोन ने ओ चान आरजे मामनपुर हितेंद्र दास असम in ma muni ram lo chun nu puya nei turin palai atir fel din diam to anti hi ilo shave em ron te oi he thil hi mo ka tan chuan thil tharani ma se pa thadon via he thu thang hi thu dik ani thei angem le thu dik ani nga chan ma muni ram lo chu kolom kolo kolom kalom pui via wang ron tia ui ngau nei chi hian ron nui tho nei zo mo jelo za ma he zan chu ti rual e ro chuan meng moi te a khong ai thak don mangnge an ron ti ni a wan za thei tak em vele eng po ni se jelo za ma min lo thon char char o min ro thuru kha min ron shil char char zel don ya o aur yahan pe meng moi te kehta he ma mon pui ke wa lakha indolut tok mai remiti chuan ka thut nang all don ka ti taw lo ka nuar ni kha

आपकी अर्जुमान भी 108.7 FM जोई में आप सबके साथ आया फिर से हिंदी गीतों का आनंद लेने का। दोस्तों चलिए चलते हैं गीत की ओर। तुरंत ही सबसे पहले गीत के तौर पे आप सबके लिए लाए हूँ लग जा गले, सनम द्वारा गाया गया बहुत ही लोकप्रिय गीत और बहुत ही खूबसूरत गीत आप सबके लिए मेरी ओर से।

दोस्तों, सनम की आवाज में तो कुछ बात है, लाजवाब है ना दोस्तों। और गीत भी इतना ही सुंदर। हाँ, मैं जाना चाहूंगी आपके SMS की ओर। यहाँ लल दिन पुई अफल कौन वेंगलाई की ओर से SMS इस तरह आया है। इन्होंने कहा है, आरजे प्ले ले तुरखा नंगमा तान ले लौंगाई छवे जोंग जोंग ले आरजे जोंग जोंग तान ले कठियानते वेंग संग संग मी ते आर सी या तुआंगा मानजवा रिन मो या वाल पुया आचिन चिना लोमा ते पुया ते तान लल दिन पुया फल फलकोन वेंग लाई एफ एम गाइस ए गाइ सांग एम एम तो रंती इन लल दिन पुया हियान रन थन ने लल दिन पुया एफ एम गाइ सांग एम एम तो फलकोन वेंग लाई मी ये एसएमएस तक लो मुआई ठियान ते जोंग जोंग पन अन लोंगे थाक ने बेसेंग ओ चोन हनल देव देव करन प्ले थाक दो ना इतान करन ते बोके किसी जेसिका की ओर से। यहां पे एसएमएस अगला जो है इस तरह है। उमान पुए इलोले ले तामो नेक्स्ट खा नंगले ड्यूटी पुइतने निंतान ओरन तिने देव ना मेना पीसी जैसे का कन लोम ल तुका इतान करन ति लेत वेआ तिखान तुइ तकिनी लो ngai थजेल दोन ने ओ फर्नु मन पुइ मिंग मोइते अखु कवेल चाक ए रोन ति के वाल हियान ओए थो वेल लंपंग अंगजो ng चाक ना रोन इर छुआक ता ख इंग वांगे न्यांग ति रो जों ngai तोन लियान तक ओम ता नि एंग पो नि से लोविन बिंग दाई शाम शाम लंग मो चोन आ इंग आइ बेर खान ले दोन सी आ चुवां चुआन इन तुई तकिन लोंगाई थपोत लाया रोन नुई न सब मै बक्सिया मो एंग पो नि से केवल जानिन जो एक्टिव थरियाउ मे नोम टप ताने चन मेंग मोय ते लो ngai थ्ला इन करिंगा हे अरोन चो न सम मे जे ने ओ आ चल चाहूंगी अगले गीत के। और अगला गीत कम सुंदर नहीं, बहुत सुंदर है। ये रहा आप सबके लिए माही वे। ये गीत जो है इसका खूब आनंद लीजिएगा दोस्तों। ये रहा गीत।

दोस्तों, मैं जाना चाहूंगी एसएमएस की ओर। यहाँ एसएमएस जो है जेल अल्जाम की ओर से आया है। इन्होंने कहा है, आरजी माँ मोनपुई नमस्ते। कहा है फिर से इन्होंने, आपको भी नमस्ते आरजी माँ मोनपुई। दो ओम न खात नो कवन लो मे मो के इन बॉल फाइसर सर फोट्स ओ आरोन्ती आ चौन के इन बॉल बॉल जो हुन हुना करोन रा कंग रोन्ती ने नेक्स्ट सॉन्ग दो थो तक के नितान से अल्बम थो रिन कन थन सक ना पंगे हंति मई ला इलो मोम रुत्या निया लो मोम तीन हुआ खानिन मो एंगे मुनि खई रोन तेल दोन ती खा कच्यांग दे ओरे तो ताई से मासे कलोम थो थो मासे इतान चोन कफल सेल दोन ते लो मे ओ रन नोइन न सते ए मे मुनि खा कचो शिया सा नितान ये हेंग कन का आरजे पुइजों सोंग तिनेन ह्यान आरजे तु मुनि ते ते पखत तीलवा चान के नी खचुमो कन लाइन खा हे ता खाना नि देवता तरो तो एमोतान दै असिन ले रंत्या ओए रंदी छु तानी चवान चान तो मनी ते ते तान बिक्सेल एम एमिन जेल जामा यानिन लाना चुचु कंसुई लो लुंगा अरानी आरजेवी एलिगन छान नो दो ओम ते इ अनि आ आ जेल जामा हनिन बॉल फाइव वत लतरो चान एंगे ने चोते ए तो एम कशल लवा इलो लुट ले फत दोन ने ओ कन गाय दोन चे ओम लो चान आ चलना चाहूंगी अगले गीत की ओर। दोस्तों, इसी तरह से अगला गीत बहुत बहुत सुंदर ये रहा समझावा गीत आप सबके लिए मेरी ओर से।

दोस्तों, वाकई में बहुत बहुत मार्मिक, बहुत बहुत मन को छू लेने वाला गीत था। और यहाँ SMS जो है, लल दिन पुया फलकोन वेंगलाई की ओर से, इन्होंने कहा है आरजे इप्ले ले तुर्खा नंगमा तान ले लोंगाई थवे जोंग जोंग ले आरजे जोंग जोंग तान ले कठियान ते वेंग संग संग मीति तान लल दिन पुया ही आन रन तिल नन लेने चुआन लल दिन पुया मिलोंगाई थरिंग चीना कन लोम एम एम ने तिखान कन गई थाक ले तुर पो ही इतान करोंती अंगा। और ये गीत जो है, हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, ये गीत जो है बॉर्डर फिल्म का एक बहुत ही मन को छू लेने वाला गीत है। इस गीत को मैं डेडिकेट करना चाहूंगी आप सबको। और एक और SMS यहाँ पे चोय फाइजाओ की ओर से, इन्होंने कहा है जे मनपुई इश सेल ना अतान मो कव अठा मो रोनती तुम यंग तर मन मो तो किन रोनता इति चिया रेंग ओले अठा लोम पथियान जारा ओ चवान कवन गाई चवे रोनते नंग देउ इ गय ओमले तो खोगे बोता दिया हे इ रोन लंगले लोल मई जो मिरोन सरप्राइज चियांग ले मई जो य फाइजाव नंग नंगनी इंदम था एम तिलम खानी ओ मिन लो छांग दोनिया इलप्ले ले ही अथुलम अथलो मई इलप प्ले ही अथु अथुलम शेलो म इला अथलाई ले मंगाई नलम अकम रिक चुआन अमी आ ए कथु सया ngai ro o aron tia akam inge ni he hi niang o cho ye phai zau hian in ron type de nok nok ni phai zau po aron type de nok nok to niang man mo to kin ka chair man loi lau po nyang a eng po ni se cho ye phai zau he ila da mani ti kan sha kan lom hle mai chuan tui ta kai ngai tha ka tan a la thu sha lo ma la ngai dom teuk me kan ron play le do na i tan liao liao o ha yahan pe type jo he chal raha he kai श्रोताओं की ओर से हमें मैसेज प्राप्त होने वाला है, मैं जानती हूँ, लेकिन फिलहाल हम चलेंगे गीत की ओर। ये रहा गीत जो बहुत ही लोकप्रिय गीत है, बॉर्डर फिल्म का, संदेशे आते हैं आप सबके लिए मेरी ओर से।

दोस्तों, मैं चलना चाहूंगी एसएमएस की ओर. यहाँ पे जेल जामा की ओर से इन्होंने कहा है, आरजे मामोन पे एक ओ कुंगलेर थका ओए था तो आकाशवाणी लम्हा मिन वी रेसन ओके कनु वन स तके नेतिंगे कुंगते हि ओ क्लोतिया अदम तोरांगाई फतंग ओ अलिमना नि फोचवानिन कन हंति फोट्री मै दोने मि मासे ngai ओम वे रियाउ मै आ इंपोनी से हन हाउ हन हाउ बोला हन चो छवाक ते वो चान जेलल जामा कन ngai थाले तोरि तान चान आरजे इप्ले ले तुर खान नंग मा तान ल्याउ ल्याउ लदिन पुया फल कोन वेंग लाई हियान रोंते ने कवा हन लोंते लुल लेम लदिन पुया तान ल्याउ ल्याउ करन ति लेत वे ओ खाक ते पाबिल खथिर हियान इन आरजे वान पुई इला प्ले ले तुर खा पीसीजेसी का मेंगमोय ते आ पार पारिपु ओमेगा सांग ते वी कुंग ते इतान कलाने रोंतीने हाक्ते पाबिल खोथिर नंग मा मै मे लविन कंति बोक अंग हा कंति बोके ओ चला चाहूंगी अगले गीत की ओर. अगला गीत आप सबके लिए ये रहा सनम की ओर से एक बहुत ही सुंदर गीत, ठीक है ना. एलजेड साइलो यहाँ लिख करके हमें भेज रहा है. वन पुई तुय रिंदी फाई अटंगिन रनते ने ओले एलजेड साइलो इतान ल्याव ल्याव कन गए छाग ले तोड़ है. ओ हाँ, इसी तरह आपके आरजी वन पुई 100.7 FM जो में आप सबके साथ दोस्तों. इस गीत के साथ साथ मैं यहाँ से फिलहाल चली जाऊंगी, लेकिन मैं लौटूंगी अपने आरजी चॉइस के साथ 9:02 में. तब तक के लिए मेरा फिर से इंतजार कीजिएगा. ये रहा गीत.

0: Hey, he FM zo oi za point pasari atanga pon cho ani tuna hian zandar sari le minute so mani a kum som pani chunga sarkar lai pui malak na langsar zwalte news service division in abwat sai delhi mi lak chon ilongai thang u
1: ye akashwani hai 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम की नीति पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सीआरपीएफ के पूर्व महानिरीक्षक एमपी नथैनियल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं पत्रकार सौरभ शुक्ला।
2: आकाशवाणी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्र प्रथम के मुद्दे पर। तो प्रोफेसर अंशुल जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि जो एक 12 साल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा रही है और इसमें राष्ट्र प्रथम की अवधारणा और खासतौर पर हम जो पॉलिसी मेकिंग या नीति निर्माण की प्रक्रिया होती है उसे आप किस तरह से देखते हैं कि वैश्विक परिवेश में परिदृश्य में किस तरह से इसे एक नई दिशा दी गई है।
3: विगत 12 वर्षों में हमने भारत की यदि विदेश नीति और आंतरिक नीति की दृष्टि से देखें तो वैश्विक राजनीति में एक अलग पहचान बनाई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों में राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ साथ हमने वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा दर्शन

0: शिक्षण है जो सदियों पुराना है उसको भी वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है, और एक रणनीतिक स्वायत्तता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखते हुए उसका इस्तेमाल करते हुए विश्व बंधुत्व की भावना के साथ हमने न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े परिवर्तन किए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब नीति निर्माण की हम दृष्टि से देखते हैं तो हमने भारत की यदि हम ब्रांड इमेज को देखें तो वो एक विगत 12 वर्षों में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर ये इमेज वैश्विक स्तर पर बनी है, जिसमें भारत को ग्लोबल साउथ का प्रणेता दूसरे देश मानने लगे हैं। और इसके पीछे कारण है, उदाहरण स्वरूप जब 2023 में हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी थी जिसे कि पश्चिम के शक्तिवान देशों का एक मंच माना जाता था, उसका एक डेमोक्रेटाइजेशन करते हुए हमने अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट मेंबर के रूप में G20 से जोड़ा। तो इस प्रकार से ग्लोबल साउथ की नेतृत्व की भूमिका में एक महत्वपूर्ण योगदान हमारी पॉलिसी मेकिंग की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा जो पश्चिम के तमाम शक्तिवान देश हैं और ग्लोबल साउथ के विकासशील और अविकसित देश हैं, उनके बीच संतुलन बनाए रखने का एक पुल का काम भारत ने किया है, लेकिन इसके साथ साथ अपने राष्ट्रीय हितों को भी सर्वोपरि रखा है। तो जब बात आई कोविड की, कोविड के काले समय के दौरान हमने न सिर्फ अपने लिए 140 करोड़ हमारी आबादी के लिए हमने टीके बनाए, होम ग्रोन वैक्सीन बनाए, हमने दुनिया भर के देशों को, लगभग 150 देशों को हमने जीवन रक्षक दवाएं और टीके भेजे, और वैश्विक स्वास्थ्य की जो कूटनीति है उसमें एक नया हमने अध्याय शुरू किया। एक रणनीतिक संतुलन हमारी नीति के माध्यम से हमने बनाए रखा, तो हमने नॉन अलाइंड की बजाय ऑल अलाइंड की नीति अपनाई, जिसमें एक ही समय में एक तरफ हम रूस के एक नेचुरल अलाय वर्षों से हैं उस यात्रा को हम जारी रख पाए, और दूसरी ओर अमेरिका जैसे देश के साथ हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया सफल अध्याय शुरू किया। हम इसराइल के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं लेकिन हमारी विदेश नीति में पैलेस्टीन को भी मान्यता है। तो इस प्रकार से उधर यूक्रेन के साथ भी संवाद जारी रखा, क्वाड के माध्यम से अमेरिका के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारी की, तो ब्रिक्स की भी हमारे पास महत्वपूर्ण मेंबरशिप है। वैश्विक सम्मान में वृद्धि हुई इस नीति की वजह से, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में 30 से अधिक देशों के द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान से नवाजा गया है, और इसी से समझ में आता है कि कूटनीतिक दृष्टि से, नीतिगत दृष्टि से भारत किस तरह से एक सफल देश के रूप में आगे बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल श्री, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब हम इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं, राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, तो विदेश नीति के मोर्चे पर भारत के पारंपरिक और नए साझेदारों के साथ संबंधों को किस तरह से प्रभावित किया गया, क्या लगता है आपको, कैसा बदलाव रहा है, ये अच्छा बदलाव रहा है या कुछ चुनौतियां भी रही हैं?
0: ये एक बड़ा और सफल बदलाव मैं मानती हूँ। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब शीत युद्ध चल रहा था जिसमें दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। तब की स्थितियों को देखते हुए भारत ने नॉन अलाइन रहने का निर्णय लिया, और तब की स्थितियों के हिसाब से वो महत्वपूर्ण था, जिसमें हम न यूएसएसआर के ब्लॉक के साथ न अमेरिका के ब्लॉक के साथ अटैच हुए, बल्कि जो विकासशील देश थे एशिया के, लेटिन अमेरिका के, अफ्रीका के, उनके साथ हमने एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू किया। लेकिन पिछले 12 वर्षों में जिस प्रकार से भू राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, इसमें यह आवश्यक हो जाता है कि अलग अलग विषयों को लेकर जहां जिसके साथ हमारी एक साझा हमारे इंटरेस्ट्स हैं या हित हैं, वहां पर उन सकारात्मक हितों को ध्यान में रखते हुए हम हाथ मिलाएं, हैंडशेक करें। तो भारत विगत 12 वर्षों में एक बड़ा परिवर्तन ये रहा कि नॉन अलाइंड से ऑल अलाइंड देश बना, और यही कारण है कि एक और रशिया के साथ हमारी एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो है ही, हम नेचुरल अलाय है रशिया के, दूसरी ओर अमेरिका के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया अध्याय शुरू किया, जिसमें कि काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स को लेकर हमने विशेष तौर पर काम शुरू किया, और वहीं एक इशू बेस्ड इंगेजमेंट भी हमने कूटनीति में जोड़ा। और वो क्या है, तो अलग अलग जो मुद्दे हैं जैसे कि ऊर्जा सुरक्षा का क्षेत्र हम देख लें, स्वास्थ्य का क्षेत्र देख लें, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या तकनीक की दुनिया को देख लें, कृषि का क्षेत्र देख लें, शिक्षा का क्षेत्र देख लें, या सामरिक क्षेत्र देखें, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशों के साथ हम जुड़े। हम लैटिन अमेरिका के देशों के साथ विगत 12 वर्षों में पहली बार इतना करीब गए, हम अफ्रीका के देशों के पास गए, इन देशों के पास बड़ी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज हैं लेकिन ये अविकसित देश है, तो इनके साथ भारत ने एक रोड मैप बनाया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स अलग अलग देशों के साथ शुरू की। एशिया में हमने अपने पड़ोसियों के साथ और चीन जैसे देश के साथ में रिश्तों को सामान्य करने का प्रयास किया, हालांकि चीन की तरफ से जिस तरह से हमारी सीमाओं पर लगातार चुनौतियां प्रस्तुत की तो वहां पर फिर हम चुप भी नहीं रहे। तो सबसे हमारी यदि विगत 12 वर्षों में मैं विदेश नीति की सफलता बताऊं तो वो ये है कि हम एक तरफ राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ, लेकिन विश्व बंधुत्व का दर्शन रखते हुए अलग अलग देशों के साथ अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी मल्टीपोलैरिटी को, मल्टी अलाइनमेंट को, वैश्विक सुरक्षा शांति को बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर चीन जैसे देश जब आकर हमारी सुरक्षा के लिए कोई खतरा उत्पन्न करते हैं, या पाकिस्तान जैसा देश जो आतंकवाद को लगातार पल्लवित पोषित करता है, तो फिर वहां पर भारत सक्षम, समर्थ और सशक्त रूप से जवाब भी देता है। तो इसमें चुनौतियां तो निश्चित तौर पर आती हैं जब पाकिस्तान जैसा देश हमारे सामने हो, जो अपने प्रॉक्सीज को या आतंकवादी संगठनों को लगातार एक्टिव करके आगे बढ़ाते हुए भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां उत्पन्न करने का काम करता हो। लेकिन दूसरी ओर द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर हमने जो साख बनाई, जो सफलता आ गई, जिस तरह से दूसरे देशों की सहायता की जब उन पर जरूरत पड़ी, तो फिर यहां पर इन चुनौतियों का समाधान भी हम निकाल पाने में सफल रहे हैं।
1: बिल्कुल, जाहिर है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कामयाबी भारत को हासिल है उसके बारे में अंशु जोशी जी बता रही थी। अब हम रुख करते हैं एमपी नथैला साहब का। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर अगर हम बात करें, इंटरनल सिक्योरिटी के मसले पर, तो पिछले 12 सालों में हुए बदलावों को आप किस तरह से आंकते हैं और इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे?
2: जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो अभी एनवायरमेंट है, ये आप देखेंगे पहले काफी डिस्ट्रिक्ट में माओइस्ट का काफी प्रभाव पड़ा हुआ था, जिसके वजह से वहां पर डेवलपमेंट बिल्कुल रुका हुआ था। लेकिन अब जो है, पिछले कुछ सालों में इतना जोर दिया गया माओइस्ट को खत्म करने के लिए, और सबसे बढ़िया बात तो ये रहा कि हमारे गृह मंत्री ने एक आदेश जारी कर दिया कि 31 मार्च तक 2026 में एक बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। तो इसको मद्देनजर रखते हुए सीआरपीएफ और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस ने काफी जोर लगाकर, खासकर छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में जितने भी आतंकवादी थे, इनके पीछे बड़े पैमाने पे ऑपरेशन लगाए, और उन ऑपरेशन में कई माओवादी को मार गिराया, और उनको मार गिराने की वजह से इनका मनोबल इतना नीचे गिर गया कि करीबन 5000 माओवादी पिछले 2 साल के अंदर अपने आप खुद आके सरेंडर कर गए। और सबसे बढ़िया ये इसका प्रभाव रहा कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम निकाला, स्कीम निकाला, जिसमें कि उनको 50,000 रुपए दिए जा रहे थे, उसके अलावा उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी और मकान दिए जा रहे थे। इनके वजह से काफी तादाद में माओवादी अपना जो जंगल में रिहाइश थी वो छोड़ के बाहर आए और सरेंडर कर दिए फोर्सेस के सामने, जिसके वजह से माओइस्ट का बिल्कुल खात्मा हो गया है। और यहाँ इनके नेता भी जो थे, वो भी कई नेता, बड़े बड़े नेता जो कि पहले बड़े कट्टर आतंकवाद थे, उन्होंने आगे आकर अपने आप आत्मसमर्पण किया, और इसके वजह से माओइस्ट तकरीबन खत्म ही हो गया है। अभी केवल एक ही बचा हुआ है झारखंड में, जो कि पॉलिट ब्यूरो का मेंबर है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में वो भी मारा जाएगा या वो खुद सरेंडर कर लेगा, क्योंकि अब उनको भी पता है कि अब ये चलने वाला नहीं है। उन्हीं के कई फॉलोअर्स सरेंडर कर चुके हैं, और ये मिसर बेसरा के पास केवल कुछ ही आदमी बच गए होंगे जो कि सेरेंडा फॉरेस्ट के जंगलों में घूम रहे हैं, और ऑपरेशन भी कोबरा के बड़े जोरों से जारी है, और कुछ दिनों में ये मारे जाएंगे या खुद सरेंडर कर देंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में करीबन 8000 जो मिलिटेंट्स थे, इंसर्जेंट थे, उन्होंने खुद सरेंडर किया, जिसमें कार्बी अंगलोंग के इंसर्जेंट थे, बोडोस के इंसर्जेंट थे, और आसाम के भी इंसर्जेंट थे, और उसके अलावा मणिपुर में जो यूएनएलएफ के इंसर्जेंट से सबने सरेंडर किया है। और उनके सरेंडर करने के बाद काफी मात्रा में वहां पर हथियार खत्म हो गए और इंसिडेंट भी खत्म हो गए, और उस वजह से काफी वहां पर शांति फैलाया गया उस इलाके में, और उसके वजह से डेवलपमेंट भी काफी जोरों से चल रहा है, और इन डेवलपमेंट्स के वजह से लोगों को बहुत फायदा चल रहा है। पहले ये डेवलपमेंट वगैरह रुके हुए थे क्योंकि आतंकवाद ने काफी जोरों से वहां पर कब्जा मार के रखा हुआ था, और इसको खत्म करने के बाद अब डेवलपमेंट जारी हो गई है, सड़कें बन रही हैं हर जगह, कनेक्टिविटी बढ़िया बन रहा है, और करीबन 70 से 80 एयर स्ट्रिप्स भी रिवाइव कर दिए गए कई जगहों में, और जिनके वजह से अब वहां पर एयर फ्लाइट्स भी शुरू हो गए हैं। अब लोगों को काफी सुविधा पहुंच रही है कि वो एक जगह से दूसरे जगह नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं दूसरे जगहों में भी आराम से सफर कर सकते हैं।
1: इसके अलावा आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि घरेलू मोर्चे पर अपने रक्षा उत्पादों में हम किस तरह से और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में डिफेंस सेक्टर का जो बजट है वो बड़े पैमाने पर बढ़ा है, तो उत्पादन किस तरह से हो रहा है जो भारत को और मजबूती की तरफ आगे बढ़ा रहा है?
2: इसमें तो कोई शक नहीं है कि कई जो इक्विपमेंट्स है वो इंडिया में ही बनाए जा रहे हैं, और वो आत्मनिर्भर को अपने फोकस में रखते हुए तकरीबन 38,400 करोड़ का जो है एक्सपोर्ट वो अब जो है शुरू कर दिया गया है। हमारे यहाँ से हथियार बन रहे हैं और ये एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। उसके अलावा पहले जो हम हथियार मंगा रहे थे बाहर से उसमें भी काफी गिरावट आई है। करीबन 5,500 डिफेंस आइटम्स जो पहले हम बाहर से मंगाते थे वो हमने मंगाना बंद कर दिया और अपने ही देश में इन सब का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया। तो इससे बहुत बड़ा फायदा हमारे देश के इकोनॉमी को हो रहा है, और उस वजह से जो युवक हैं उन लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। और हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में। तो इस तरीके से काफी नौकरियां अभी लोगों को मिल रहे हैं, 15 लाख जवानों को इससे काफी फायदा हो रहा है। आज ही के दिन करीबन 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए जा रहे हैं।
1: बिल्कुल, अब रुख करते हैं प्रोफेसर जोशी का। मैम, आपसे समझना चाहेंगे कि पिछले 12 सालों में भारत को एक रिएक्टिव नेशन के बजाय एक प्रोएक्टिव नेशन के तौर पर देखा जा रहा है। तमाम उदाहरणों का जिक्र किया आपने कि एक जो ग्लोबल साउथ की एक प्रभावशाली आवाज बन रहा है भारत, साथ ही साथ वैक्सीन मैत्री की भी पहल भी मानवीय दृष्टिकोण से एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। तो इन सब चीजों का एक फायदा अगर हम एक राष्ट्र के तौर पर देखें भारत को, तो वो किस तरह से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है?
0: आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु चर्चा में जोड़ा, क्योंकि अक्सर हम अपनी विदेश नीति की सफलता की बात करते हैं, हमने किस प्रकार के की नीतियां बनाई और किस तरह से विश्व के अलग अलग कोनों में जाकर के किस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर मित्रता के नए प्रतिमान स्थापित किए, हम इस पर तो बात करते हैं, पर इसके जो आउटकम्स हैं उसकी चर्चा करना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुछ ऐसे टेंजिबल आउटकम्स हैं जो हमने अर्जित किए। उदाहरण बताती हूँ कि किस प्रकार से यूरोपियन यूनियन ने पिछले दिनों भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन की, जिसमें बड़ा महत्वपूर्ण एफटीए है, और इसके साथ साथ एक हिस्टोरिक डिफेंस पैक्ट भी यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ साइन किया, और ये एशिया में भारत दूसरा देश है जिसके साथ ही डिफेंस पैक्ट ईयू ने साइन किया है। अब इस एफटीए के अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग प्रकार से सकारात्मक टेंजिबल दृष्टि से आउटकम्स इसके निकल के आएंगे, और इससे हमारे एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफिकेशन को तो बहुत उछाल मिलती हुई दिखाई पड़ती ही है। प्रोफेशनल मोबिलिटी की दृष्टि से भी हमारे पास, हम इस वक्त दुनिया की जो यूथ आबादी है, हमारे पास 22% जो यूथ पॉपुलेशन है उसका हमारे पास शेयर है। यदि हम प्रोफेशनल्स की दृष्टि से देखें तो स्किल्ड प्रोफेशनल्स का और यंग फोर्स का हम देश है, वी आर अ यंग नेशन। तो यूरोप के इन देशों को इसी प्रकार के स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत है। तो आप देखिए, अपने एक्सपोर्ट्स में इजाफा, इन्वेस्टमेंट्स में इजाफा, हमारा जो बायलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड है ईयू के सदस्य देशों के साथ उसमें इजाफा, तो निश्चित तौर पर रेवेन्यू जनरेशन में और एफडीआईज में इजाफा, तो इससे ओवरऑल जीडीपी में बढ़ोतरी। और फिर इसके साथ साथ जो एक रोजगार की बात आती है, क्योंकि हम एक बहुत हेविली पॉपुलेटेड देश है, तो उसमें फिर हमको एक सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ती है। और ऐसा हम अलग अलग, यदि आप यूएई के साथ के अपने एफटीए को और हमारी व्यापारिक डील को देखें तो वहां पर भी प्रोफेशनल मोबिलिटी इज इन द सेंटर। आप यदि अभी हमारे साथ, हमारी मर्कोसुर के साथ जो कि लैटिन अमेरिका का एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग ब्लॉक है, उनके साथ भी एफटीए को लेकर के बातचीत लगभग फाइनलाइज है। पश्चिम एशिया के संकट की वजह से जीसीसी के देशों के साथ भी हमारा एफटीए लगभग फाइनलाइज था, थोड़ा सा वो मुझे लगता है थमता हुआ नजर आता है वहां की स्थितियों की वजह से, पर उसमें भी प्रोफेशनल मोबिलिटी और इन्वेस्टमेंट्स एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ। तो ये तो टेंजिबल आउटकम्स की बात हुई, मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे अनेकों उदाहरण है। तो अब जैसे यदि मैं डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में जाऊं, तो पहले हम एक नेट इम्पोर्टर देश के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अपनी सफल विदेश नीति के चलते आज हम एक एक्सपोर्टर देश बनके इस एक डिफेंस ऑफ सिक्योरिटी के क्षेत्र में उभरे हैं, जिसमें अपने आसपास के कई ऐसे देश हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में विशेषकर हमारे होम ग्रोन जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको देख करके और चमत्कृत थे और

0: भारत से उन्होंने हमारे जो होम ग्रोन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो दूसरे इक्विपमेंट हैं, वो लेना शुरू किया है। बहुत सुखद समाचार है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कुछ हमारा जो मेक इन इंडिया का और विकसित भारत 2047 का रोड मैप है, तो कुछ इस प्रकार के आउटकम्स है। उदाहरण स्वरूप वैक्सीन मैत्री, जब हमने 150 देशों को अपने यहाँ के वैक्सीन भेजे, तो उस समय के ब्राजील के, ये उदाहरण है, ब्राजील के जो राष्ट्रपति थे जैर बोल्सोनारो, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने संजीवनी ले जाते हुए हनुमान जी का चित्र लगाया और हमारे प्रधानमंत्री को धन्यवाद करते हुए कहा कि आप नहीं जानते आपने ब्राजील के लिए क्या किया। इसके बाद ब्राजील के साथ हमारा एक अलग स्तर पर स्ट्रेटेजिक डायलॉग और पार्टनरशिप शुरू हुई। तो हमने जब सोरल अलायंस और बायोफ्यूअल अलायंस की स्थापना की, इसका पायनियर किया, तो ब्राजील उसमें हमारा सबसे बड़ा सहयोगी देश बनकर के सामने आया। तो ये कुछ इस प्रकार के उदाहरण है कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं अपने वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन के साथ, पॉजिटिवली किसी दूसरे देश के लिए अच्छा करते हैं, तो उसके कुछ ऐसे आउटकम्स आते हैं जो फिर हमारी जो ये लंबी सुदीर्घ विकसित भारत की यात्रा है उसमें हमें योगदान करते हुए नजर आते हैं। मैं अमेरिका का उदाहरण दूं, अमेरिका के साथ बहुत महत्वपूर्ण डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में लेमोवा, कॉमकासा और बेका नाम के लॉजिस्टिक सप्लाईज को लेकर के हुए बड़े महत्वपूर्ण समझौते हैं, और अमेरिका ने अपना रियल टाइम सैटेलाइट एक्सेस भारत को देना शुरू किया, जो कि ऐतिहासिक है। तो ये काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म्स की दृष्टि से देखें या अपने सामरिक क्षेत्र में अपर हैंड की दृष्टि से देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चाहे क्वाड का मंच हो, ब्रिक्स का मंच हो, एससीओ का मंच हो, इप्सा हो, तो I2U2 की हम बात करें, तो भारत जिस प्रकार से अलग अलग अपने इनिशिएटिव्स के चलते आगे बढ़ा है, तो उसमें ग्लोबल साउथ की हमने आवाज मजबूत की, एक पुल के रूप में हम पश्चिम के देशों के और ग्लोबल साउथ के देशों के बीच में एक साथी बन करके आए, और इसके अलावा हमने हमारे मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हुए विकसित भारत 2047 की यात्रा के लिए बहुत सारे माइलस्टोन्स जो है वो अकम्प्लिश किए हैं।
1: और शायद यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में G7 की बैठक के दौरान जब प्रधानमंत्री से मुलाकात की, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पीएम मोदी को एक टफर निगोशिएटर कहा, क्योंकि जब तमाम बायलेटरल ट्रेड समझौतों की जब बातचीत हो रही, तो भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि भारतीय निर्यातकों के साथ जो है किसी भी तरह के लिए उनके लिए नुकसानदायक ये डील नहीं होनी चाहिए, और भारत का सामान, मेक इन इंडिया सामान जो है बिकना, वही प्राथमिकता रही है प्रधानमंत्री मोदी की।
0: बिल्कुल निश्चित तौर पर, और ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ आपने इस बिंदु को भी चर्चा में जोड़ा, और यही कारण है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में हम देख सकते हैं कि 30 से अधिक दुनिया के देशों ने सर्वोच्च उनके राजकीय सम्मान से नवाजा है। भारत की क्या साख है, भारत का क्या परचम लहरा रहा है दुनिया में, इस बात का ये प्रतीक है। और बिल्कुल टफ नेगोशिएटर है, तो मैं आपको उदाहरण दूं कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील की जब हम बात करते हैं, तो उसमें लगातार अमेरिका की तरफ से दो बिंदुओं पर हम पर प्रेशर बनाया गया कि एक तो हम रशिया से तेल और गैस लेना बंद करें, और दूसरा ये कि हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए खोल दें। तो चाहे आप पश्चिम एशिया के देशों या मंचों के साथ अपने FTAs को देखें, आप हाल ही में हुए EU के साथ के अपने FTA को देखें, आप दूसरे जो एक दर्जन भर के लगभग अपने FTAs हैं, और अलग अलग जो सेपा है, कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक हमारे जो अग्रीमेंट्स हुए हैं कई देशों के साथ में, तो हमने इस बात को जब नेगोशिएशन के लिए स्टेक होल्डर्स बैठते थे, तो इस बात को हमने स्पष्ट किया था कि हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल सेक्टर किसी के लिए नहीं खोल सकते, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव सेक्टर है। हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स और इससे जुड़े हुए जो हमारे भाई बहन हैं, या जो कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे भाई बहन हैं, फिशरीज से जुड़े हुए जो भाई बहन हैं, उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ लघु और मध्यम उद्योग, और विशेषकर जो भारतीय कला से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं, उनको कैसे नए नए बाजार मिल सके, उनको कैसे हम प्रमोट कर सके, ये भी जब भी हमने आर्थिक और तकनीकी कूटनीति के हमने समझौते किए हैं या इसको लेकर हम आगे बढ़े, तो वहां प्रधानमंत्री ने इसकी बात की है। तो आखिरकार जब अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील अनाउंस हुई, तो उसमें फिर ये बात स्पष्ट होकर के आई कि इन दोनों बिंदुओं पर भारत ने किसी प्रकार का नेगोशिएशन नहीं किया। और वहीं जैसे रूस से जो तेल और गैस लेने की बात है, सबसे ज्यादा डिस्काउंटेड रेट पे हमें रूस से तेल और गैस मिल रहा था, तो हमको उर्सुला वॉन ने भी 2 या 3 साल पहले लगभग ये चेताया था कि हम रूस से तेल और गैस लेना बंद करें, लेकिन तब भी हमारे विदेश मंत्री ने इस बात को स्पष्ट किया था कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को केंद्र में रखते हुए, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करते हुए वही डिसीजंस लेता है जो भारतीयों के हित में है। जब हम पर प्यूनिटिव टैरिफ्स लगाए गए, डोनाल्ड ट्रंप ने जब घोषणाएं की, तो हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि भारत के लोगों को मैं इसका नुकसान नहीं उठाने दूंगा, और मेरा व्यक्तिगत इसमें नुकसान हो सकता है, मुझे कीमत चुकानी पड़ सकती, मैं इसके लिए तैयार हूं। और इसके बाद भारत ने लगातार अपने जो ये तमाम सफल विदेश नीति से मित्र बनाए हैं, तो हमने इन सबसे सहायता ली, अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई किया, अपने एक मैक्रो इकोनॉमिक रेजिलियंस को फिर हमने बढ़ाया, और इसके चलते देखिए हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई ऐसा

0: इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा, उल्टा हम पर जब प्यूनिटिव टैरिफ्स लगे और बड़ा हल्ला मचा था कि अब क्या होगा और नुकसान होगा और अब हम क्या करेंगे, लेकिन आप देखिए कि हमने 7% से ज्यादा और फिर 8% की क्वार्टरली हमने जीडीपी ग्रोथ रजिस्टर की थी, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक ग्रोथ रही। तो ये इस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ में इस प्रकार के अलग अलग अकम्पलिशमेंट्स के साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
1: अब हम रुख करते हैं एमपी नथालस आपका, उनसे पूछते हैं कि सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जिक्र किया कि तमाम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रेड कॉरिडोर से ग्रीन जोन में बदलने की रणनीति अपनाई गई थी और वहां भी कामयाबी हासिल लगी, नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा संवाद और समन्वय के भी परिणाम सामने आए। तो आपसे जानना चाहेंगे जो एक और 3 बड़े ऑपरेशन हुए थे, उरी का हम जिक्र करें, बालाकोट का जिक्र करें या ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयों का, तो ये 3 जो बड़े एक्शन रहे हैं इसको भारत के सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन ऑपरेशंस ने किस तरह से परिभाषित किया और क्या मायने आप देखते हैं यहां पर जो एक एक्शन रहा?
2: इसमें सबसे बढ़िया चीज ये था कि जैसे ही वो कहीं इस तरह के वारदात कर रहे थे, जैसे कि अटैक किया उन्होंने कॉन्वॉय सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर, उरी में अटैक किया और उसके बाद जो पहलगाम में अटैक किया, हमने तुरंत उसका जवाब दिया। ये नहीं कि हम रुके रहे सोचते रहे क्या करना है, लेकिन तुरंत अटैक करके हमने उनको साबित कर दिया कि इस तरीके के हरकत अगर आप करेंगे तो हमारा कार्रवाई एकदम जवाबदारी होगी। और इसमें खासकर जो पहलगाम अटैक हुआ था जिसके बाद ऑफ सिंदूर चला, उसमें करीबन 100 जो आतंकवाद टॉप के उन लोगों को मार गिराया और कई उनके आतंकवाद के जो बेस अक्रॉस द बॉर्डर थे वो भी खत्म कर दिए गए। हमारे एयरक्राफ्ट ने जाके वहां पर अटैक किया और उनका खात्मा किया, जिसके वजह से उनमें काफी ढीलपना आ गया, अब वो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। और इसके अलावा ये भी है कि जब भी वो कोशिश करते थे पहले बॉर्डर से क्रॉस करने के लिए, काफी बार सफल हुए। मैं खुद वहां श्रीनगर में रहा हूं, गए दिन हमारे एनकाउंटर होते रहते थे। अब जो है हालात काफी सुधर गए हैं और सुधरने की वजह से यह है कि वहां पर डेवलपमेंट भी शुरू हो गया है और यहां तक कि डेवलपमेंट ट्रेन भी चलने लगे हैं, राइट फ्रॉम जम्मू से लेकर बारामूला तक चल रही हैं। पहले यह सब हम सोच नहीं पाते थे। और उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में भी अगर आप देखें तो मिजोरम कनेक्ट हो गया रेलवे से। पहले हमें सिलचर जाना पड़ता था, सिलचर से फिर बाय रोड जाना पड़ता था। अब जो है रोड कनेक्टिविटी इतना बढ़िया हो गया थ्रू रेलवे कि लोग सीधे ऐजवाल तक पहुंच सकते हैं दिल्ली से लेकर वहां तक। तो ये जो कनेक्टिविटी है इससे काफी बड़ा फायदा हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, लोगों को आने जाने में काफी इसमें सुविधा पहुंची है। इसके अलावा ये है कि जब भी वहां से कोई कार्रवाई हो रही है तो उसका हमारा इंटेलिजेंस जो है इतना रोबस्ट हो गया है कि हमें सब पता चल रहा है कि वहां पर अक्रॉस द बॉर्डर क्या हो रहा है और उसी वक्त कार्रवाई कर दी जा रही है ताकि उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो इससे काफी लाभ पहुंच रहा है और आने वाले दिनों में ऑलरेडी हमारे गवर्नमेंट कह रही है कि कश्मीर में काफी पीसफुल सिचुएशन है, अभी अमरनाथ यात्रा भी होने वाला है, काफी तादाद में फोर्सेस पहुंच रहे हैं वहां पे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वहां पर कई जिलों में जहां आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा हुआ है वो भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि इतना वहां पर शांति फैल चुका है कि AFSPA की बाद में जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
1: सर क्योंकि आपने तमाम बॉर्डर पर सुरक्षा के लिहाज से अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं, इसलिए आपसे ये जानना जरूरी हो जाता है कि आतंकवाद और आतंकवाद को जो लोग पालते पोसते थे उस दौर में या आज से एक दशक पहले की अगर हम बात करें, 12 साल पहले की बात करें, तो उस रुख को आप किस तरह से बदला हुआ आज पाते हैं?
2: पहले ये था कि हमारे पास इंटेलिजेंस का थोड़ी सी कमी थी, लेकिन अब जो है इंटेलिजेंस इतना हमारा रोबस्ट हो गया है कि जैसे ही उनका कोई कार्रवाई वो वहां से करने की कोशिश करते हैं उससे पहले ही हम उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं ताकि वो हमारे जवानों पे या हमारे इलाके के अंदर आके हमला ना कर पाए।
1: इतने दिनों में भारत की एक नई डिफेंस कैपेबिलिटी भी सामने आई है, हम चाहे मेक इन इंडिया की बात करें या जिस हिसाब से डिफेंस इक्विपमेंट भारत में बनाए जा रहे हैं, तो ये अब इनका निर्यात भी बड़े पैमाने पर दूसरे देशों में होने लगा है क्योंकि भारत की शक्ति पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है। इस पे आप कितना ज्यादा जो है इजाफा मानते हैं कि दुनिया के देशों में निर्यात कितना ज्यादा बढ़ा है, उस मोर्चे पर कितनी सफलता मिली है?
2: ये जो ऑपरेशन हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, इसमें पाकिस्तान ने भी काफी अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इनके जितने भी अटैक करने की कोशिश की गए वो सब विफल कर दिए, क्योंकि हमारे पास जो था एयर डिफेंस सिस्टम काफी रोबस्ट एयर डिफेंस सिस्टम था जिसके वजह से उनके जितने भी अटैक्स हो रहे थे वो

0: सफल कर दिए गए और हमें ज्यादा उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन अगर ये हमारे पास डिफेंस सिस्टम इतना रोबस्ट नहीं होता जो कि शील्ड जैसे बन गया था तो हमारे लिए काफी मुश्किल हो सकता था। लेकिन इस एयर डिफेंस सिस्टम के वजह से हम लोग उनको रोक पाए और वो नुकसान नहीं कर पाए।
1: प्रोफेसर जोशी, आपसे समझना चाहेंगे कि जो भारत की उभरती हुई वैश्विक भूमिका विकसित भारत की तरफ है, इसमें आपको क्या लगता है कि विकसित भारत के लक्ष्य को किस तरह से गति मिल रही है और आने वाले दिनों में जो एक लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनने का, उसे हम किस तरह से पूरा होते हुए देखेंगे?
2: देखिए, जब हम अपने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को देखते हैं तो हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से भारत की जो सफल विदेश नीति है, विगत 12 वर्षों में हम जिस तरह से एक ऑल अलाइंड पॉलिसी पर चले हैं, इसने कैटलिस्ट की भूमिका निभाई है। तो भारत के यदि हम आर्थिक विकास की ओर देखें, तकनीकी प्रगति की ओर देखें, वैश्विक सुरक्षा, अपनी आंतरिक सुरक्षा की बात करें, तो हमारी विदेश नीति जो है इसके माध्यम से हम इनसे जुड़े हुए लक्ष्यों की पूर्ति करते हुए लगातार अपने विकसित भारत 2047 के रोडमैप पर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी जब कूटनीति को हम देखते हैं तो वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर बेस्ड है, मल्टी अलाइनमेंट पर आधारित है। हम किसी एक देश की हेजेमनी की नहीं बल्कि मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य पूरे वैश्विक राजनीति में लोकतंत्र को बनाए रखना है और साथ साथ हमारे देश का विकास हो और नागरिकों के हितों को प्राथमिकता मिले। तो यदि हम अपने आर्थिक मोर्चे पर जाएं और अपनी आर्थिक कूटनीति की बात करें तो विकसित भारत 2047 को यदि हम देखते हैं तो हमारी विदेश नीति का एक बड़ा जो फोकस एरिया रहा है वो FDI रहा है। किस तरह से हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा दे सकते हैं, मैंने लगातार अलग अलग FTAs का उदाहरण दिया जिनके माध्यम से इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर। फिर यदि हम तकनीक की दुनिया में चले तो चाहे AI की बात करें या हम डिजिटलाइजेशन की बात करें, तो AI समिट का ग्लोबल साउथ का भारत पहला देश है जिसने इस बार होस्ट करते हुए एक बड़ा कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया जिसमें देश विदेश से कई राष्ट्राध्यक्षों ने शिरकत की और AI को लेकर के जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाने की बात चल रही है उसमें भी भारत एक प्रणेता की भूमिका निभा रहा है। फिर आप सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में चले, क्रिटिकल मिनरल्स की दुनिया में चले, तो इन सब में अपनी विदेश नीति के माध्यम से हमने जो नई मित्रताएं लैटिन अमेरिका और अफ्रीकन देशों के साथ जोड़ी है, आगे बढ़ाई है, उसके माध्यम से हम इस लक्ष्य की पूर्ति कर पा रहे हैं क्योंकि ये विकसित भारत की यात्रा का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो इसके जरिए हमारे जो भारतीय उद्योग हैं वो मजबूत होते हैं और जो हमारी ग्लोबल वैल्यू चेन है उससे हम अपने उद्योगों को जोड़ते हुए एक यहाँ पर अपना एक बड़ा लक्ष्य हासिल कर पाते हैं। फिर हम ग्लोबल साउथ की आवाज प्रणेता बन के जो उभरे तो उसमें जो लगातार हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों का डेमोक्रेटाइजेशन हो और अंतर्राष्ट्रीय मंचों में वो रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इसमें जो ग्लोबल साउथ की इमर्जिंग इकोनॉमीज है उसके नेतृत्व की बात करते हैं, इसको आज पूरी दुनिया अपना समर्थन दे रही है, चाहे यूरोप के शक्तिवान देशों को आप देखें या लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के हमारे समकक्षी देशों को देखें। तो UNSC जैसे संस्थानों में भारत लगातार भारत जैसे देशों के नेतृत्व की मांग कर रहा है और अपनी स्थायी सदस्यता के लिए तो अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर गए तो वहां स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ने इस बात को फिर पुरजोर तरीके से रखा कि भारत को UNSC में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। तो एक वैश्विक समर्थन जो है वो आज हमें हासिल हुआ है और ये विकसित भारत 2047 का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है हमारे लिए कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी नेतृत्व की भूमिका बढ़े। फिर यदि हम अपनी सुरक्षा की बात करें, एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें, तो आसपास एक फ्लक्स की सिचुएशन है, दो युद्ध चल रहे हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी लगातार तनाव बना रहता है, इन सबके बीच हमारी जो विदेश नीति है वो किस प्रकार से लगातार हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट रहे और अभी पश्चिम एशिया की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को जिस तरह से ईरान ने बंद किया और पूरी दुनिया ने संकट को झेला, 40% लगभग तेल, गैस और LPG पूरी दुनिया को सप्लाई होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के माध्यम से और कुल जरूरत का 80-90% अपना तेल, गैस और LPG चीन, जापान, साउथ कोरिया जैसे देश मंगाते हैं। हमने लगातार 27 देशों की बजाय 41 देशों से तेल, गैस और LPG मंगाने का हमने पिछले 12 वर्षों में ये काम किया और अपनी जो ऊर्जा आयात हमारा जो है उसको हमने डाइवर्सिफाई किया। तो हमने अपनी इस प्रकार की डायनामिक ऊर्जा पॉलिसी के चलते ऊर्जा सुरक्षा हम बरकरार रख पाए तब जबकि दूसरे देशों में 40-60-70% तक की मूल्य वृद्धि हुई। आप देखिए कि भारत में 140 करोड़ की आबादी वाले देश में हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट रही, ऑयल गैस की हमारी निर्बाध आपूर्ति लोगों को मिली। फिर मैरिटाइम सिक्योरिटी जो है उस पर एक विशेष हमारा ध्यान है, हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनके उभरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में और हिंद महासागर क्षेत्र में। हमारे प्रधानमंत्री ने मॉरिशस की धरती से पहले सागर डॉक्ट्रिन प्रस्तुत किया जो कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल था। फिर जब दोबारा मॉरिशस की यात्रा की तो उन्होंने महासागर नीति रखी जो कि म्यूचुअल एंड होलिस्टिक सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल है। तो तमाम हिंद महासागर के जो लिटोरल देश हैं और जो इंडायरेक्टली जुड़े हुए देश हैं वो सब आज भारत को

0: मान्यता मानते हुए भारत से जुड़ रहे हैं और हम इन देशों के साथ साझा विकास भी कर रहे हैं। और फिर विदेशों में जो अपने भारतीय प्रवासी हैं, जो हमारे लिए हमारी जीडीपी के लिए एक बड़ा कहीं ना कहीं योगदान तो करते ही है, हमारी संस्कृति के वाहक हैं, एम्बेसडर्स हैं, तो उनकी सुरक्षा, उनके सशक्तिकरण को भी हमने एक प्राथमिकता दी है। तो आप देखिए, जब जब अलग अलग विश्व में हमने संकट देखे, वहां भारत ने तुरंत इवैक्यूएशन प्लान्स लॉन्च करके भारतीयों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया और जो भारतीय वहां पर रह रहे थे, उदाहरण स्वरूप रशिया यूक्रेन वॉर में, उनको तुरंत भारत वापस लाने की पहल और सफलतापूर्वक इसका भी अकम्प्लिशमेंट हमारी विदेश नीति की वजह से हो पाया। जब हम विकसित भारत 2047 के सामरिक लक्ष्यों को देखें, आर्थिक लक्ष्यों को देखें, तकनीकी लक्ष्यों को देखें, वैश्विक मंचों पर आगे बढ़ने के लक्ष्य को देखें, तो अपनी विदेश नीति के माध्यम से हम लगातार अपने विकसित भारत के विजन को, मिशन को साकार कर पा रहे हैं।
1: आखिर में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो राष्ट्र प्रथम की नीति रही है भारत की, शायद वही एक वजह है जिसकी वजह से दुनिया भर में जहां भी प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं, अपने नागरिकों की बात करते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं, तो ये एक नीति इसने देश के नागरिकों में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गौरव की भावना को किस तरह से और कितना मजबूत किया है, क्या मानते हैं?
0: ये जब हम इस नीति को देखते हैं या इस पूरे फिनोमेना को देखते हैं, तो ये हमारी विदेश नीति का एक आधार स्तंभ है जिसमें हम राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और नागरिक कल्याण की बात करते हैं। तो हमारे जो लोग हैं वो हमारी डिप्लोमेसी के एपिसेंटर में हैं और इसके माध्यम से हम किसी के दबाव में नहीं आते, स्वतंत्र निर्णय लेते हैं और विश्व मंच पर अपने हित की तो बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भी बात करते हैं, लेकिन हम इस बात को सुनिश्चित रखते हैं कि देश विदेश में जो अपने लोग रह रहे हैं, भारतीय प्रवासी जो हैं, उनकी सुरक्षा और उनके विकास को हम आगे बढ़ा सके। और इसमें फिर हम देखिए एक संतुलन बना के रखते हैं और इसके जरिए हम अलग अलग जो स्वभाव के देश हैं उनके साथ अपने पारंपरिक और नए तरीके के संबंधों को आगे ले जा रहे हैं। संकट के समय हम दूसरे देशों की तो सहायता करते हैं, लेकिन इस बात को भी सुनिश्चित करते हैं कि हमारे लोग किसी संकट में ना फंसे। तो ये हमारी नेशन फर्स्ट की प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि संकट में फंसे हुए भारतीयों को हम सुरक्षित रूप से स्वदेश लेकर के आते हैं। सबसे बड़ा बिंदु, आतंकवाद पर जिस प्रकार का रुख पिछले 12 वर्षों में भारत ने अपनाया है, जीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स टेररिज्म, तो ये अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता है। ये नेशन फर्स्ट की बात है, ये पीपल फर्स्ट की बात है और इसमें एक बहुत ही गजब का समन्वय हमने अपनी डिप्लोमेसी और अपनी रक्षा शक्ति के बीच में एस्टेब्लिश किया है और इसके चलते, इस नेशन फर्स्ट की बात के चलते, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको हमने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी बड़ी दृढ़ता से रखा है।
1: बिल्कुल, तो अंशु जोशी जी और एमपी नाथाले साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम की नीति पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सीआरपीएफ के पूर्व महानिरीक्षक एमपी नथैनियल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

आपके आरजे मोहनपुरी 100.7 एफएम जोई में आप सबके साथ एक बार फिर आया समय मेरे चॉइस के गीत सुनने का। दोस्तों, मैं गीत की ओर जाने से पहले कहना चाहूंगी, खुद से प्यार करना सीख लीजिए, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, दुनिया अपने आप खूबसूरत लगने लगेगी। ठीक है ना दोस्तों, आप जैसे भी हैं, जैसे ईश्वर ने आपको बनाया है, इसी में ही क्या है, खुद से प्यार करना सीख लीजिएगा, तभी दुनिया अपने आप खूबसूरत लगने लगेगी। चलना चाहूंगी गीत की ओर। सबसे पहला मेरा ये चॉइस रहा तुमसे मिलकर, ये गीत जो है आप सबको डेडिकेट करती हूं। लीजिएगा आनंद।

सच में दोस्तों, सबके जीवन में कोई ऐसा होता जरूर है जिनके बिना जीवन अधूरा लगना या तन्हा होना सच है। ठीक है, खास व्यक्ति का असर कुछ खास ही सबके जीवन में होता है। चला चाहूंगी आपके SMS की ओर। यहाँ पर पारिपू की ओर से SMS इस तरह आया है। अर्जु मोनपुए कलौलु द्वे मंचे इजाइते लेतुर खा मिंगमोई ते अंगाक ते पाबिल खोथिरल दिन पुए फल कोनतेन उलुक तकान लोंगै थाकतान नंगमा मै लविन रनते ने पर पारिपु हे मिन लोलांगाइ थजेल नि चोन नि कलोम एम एम हे हि नि चिन देउ ले कमिरोन थोन खा नि आ इंगपो नि से पर पारिपु इतान करोंते ले द्वे तुई तकि लोंगाइ थदोन ने ओ हा यहां पिके वाला की और से अगला SMS इस तरह है। फर नुमान पुई जानी निन खेल तोड़ते चू कहिलता ए अलोम खिवुर वुर तोंगे यंगले रोंते रोंदो इन समय ने ओ तुंगे इशिल ताक चू मिंग मोई ते आ मेर रोंद टाइप मेक ओ टाइपिंग एन ते आ चान नकिन आगन छियार सकांग रोंद लोवे ले अलल दिन पुई अफल कोनवेंग ला हेनार जे इप्ले ले तुरखा नंगमा तान ले लोंगाई थवे जोंग जोंग ले आर जे जोंग जोंग तान ले कथ्यान ते वेंग संग संग मी ते आर सी रिन मो या त्लोंगा मोन जवा रिन मो या वाल पुया आ चिन चिन आ लोम ते पुया ते तान अरन ते ने चोन लल दिन पुया फल कोनवेंग लाई FM गाई से एम गाई गाई संग एम एम तो इतान करन ति ले वे तुई तकिन लोंगाई थदोन ने ओ आर जे चॉइस कन मंग मे कने तो ना ह्यान वी कुंग ते राय राते इन्होंने क्या लिखा है देखना चाहूंगी। आर यू मोनपु निचिन खान मिन चोन ओम एम ने रोनते चो न सलो तो चोन सफा इन लो चो तो चेन दिया करोन छुआकता ए पावर सप्लाई कन ने मु मल लवा करोन लंग लोक थै लो ने अरोन त्या ने रोन फमोय वे ते मेम बक्सी ने वी कुंग त्या हन एंग पो नि से mundanga bin chuan san le ta moti kan lo tia he iron lu ta kan kim le ta sa te o or ming mui te ya hapi ke hata he ma mon pui tui kwal mong ami dum du om na khat ke wa la tan liao liao anui vur vurang chu ek du lo tok ai tui kwal mong ami du om na khat ti lai kha poi mo top o हितेंद्र दास असम की ओर से गुड इवनिंग आरजी जी, नमस्कार, हाउ आर यू कहकर के इन्होंने हमें सवाल किया है। आई एम गुड, मैं ठीक हूँ। और इन्होंने ये भी कहा है मुझसे पढ़ा नहीं है, पता नहीं है ये लिखना चाह रहे हैं या क्या है। आकाशवाणी के इतना अच्छा आकाशवाणी इतना अच्छा लगता है, सो स्वीट trying to write in Hindi. और हर सेगमेंट में SMS कर रहा हूँ। Really, आकाशवाणी मेरा दोस्त है, मुझे जीना सिखाता है लाइफ में, इसीलिए घर घर की वाणी आकाशवाणी। वाह, थैंक यू हितेंद्र दास, आपने हिंदी में बहुत अच्छा लिखा है। हालांकि यहाँ पे आपकी हिंदी में बंगाली का इन्फ्लुएंस है, लेकिन मैं समझ लेती हूँ, कोई बात नहीं। आप इसी तरह से हमें हिंदी में हमेशा भेजने की कोशिश करना, ठीक है? आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। और हितेंद्र दास, आप और आपकी फैमिली के लिए मैं यहाँ से डेडिकेट करना चाहूंगी। और लाइफ में हाँ, खुशी रहना हमेशा, ये सबको सीख लेना चाहिए, है ना? जिंदगी जो है ना, इसमें उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, होता है अप्स एंड डाउन्स, लेकिन हाँ, जिस तरह हम जी रहे हैं उसी में ही खुश रहना। और फिर हाँ, एक दूसरे के साथ जब हम मिल करके आपस में बातें बांटते हैं, और जब आपस में हम अपने अपने विचारों को बांटते हैं, तो बहुत कुछ ये सिखा लेते हैं। इसी तरह से FM जो 100.7 में भी आप और हम इस तरह से इंटरेक्शन में रहते हैं तो अच्छा लगता है, और दोस्ती बन जाती है हर सबकी, है ना? और इसके जरिए क्या है, हम अपनी बात जो है अपने दोस्तों को भी बांटते हैं, अच्छा लगता है, मन हल्का होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है ना, छेड़छाड़ भी होता है, ये फन टाइम होता है, एंटरटेनमेंट हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ ही साथ एक बड़ी सीख भी हमें मिल जाती है। हाँ, मैं जानना चाहूंगी अगले SMS की ओर। हितेंद्र दास, आपके लिए नेक्स्ट ट्रैक्ट जो है मैं डेडिकेट कर रही हूँ, ठीक है? हाँ, यहाँ पे मिंग मोहिते लिखता है,
माँ मन पुई पार पारिपू तान के नेक्स्ट इनका एसएमएस है पार पारिपू के लिए। और जेलल जाम की तरफ से भी एसएमएस आया है के वाला यहाँ पे लिखता है फर नु मन पुई वी कुंग ती अखा रन इन लचम वेस्या ओ कबेंग फिर वेक दोन मन ले थो सिबनी नन रन त्यामो रन नुई नसल तो कन्या ओ इंगम इंगा इंगम चे अंग मो जु त्या ती चो इंग पो दी से वी कुंग ते इंगे इंगे दान ओ आ जेलल जाओ यहां पे इन्होंने कहा है आरजे मामोन पे नमस्ते नमस्ते नेक्स्ट सॉन्ग तो तो ना चोन इतान सियाल सियाल ते ची इन ओ सियाल ल्यान ची एरो कपल ले ओ अरन ते मो आरजे मामोन पे इ मो वी कुंग वे इन ते खोगाई थाक थे बुक सिया मिंग ही इंग पो दी से वी कुंग लेर थका रोन तिता ने मासे माते हिया निन मो हे त्या फ्याम हि दोल रे उलु तो का आ आय ले तिन न स टोकिन रोन ति लेद वेंग अ जेल बॉक्स हि ता नि एंग पो नि से चु अ सोइ ले तुर पो दोत अ थु त ख ल त का लोंगाई सु अंग से ओ आकाशवाणी लुंग ले लाइफ अव थिर दो दो नि खा रोन त्या रोन ने हे रोन त्या वो नुइ न समय एंग पो नि से आकाशवाणी लुंग ले लमा पो मिल लो ट्रांसन ने पन कन गाई थ्या बेक सो लमा ते पो कन थ्या ते वे कन न्या मेल थ तक तक ले फेल तक तक तक हन लो ओ मो अ माई रो चुनिया ए मिन कलसन रे मामा वो इन चु ति रो हे रोन लंग वे चो का का सेगमेंट तो पा एंग पो नि से वी कुंग ते तुना चोनिन हे मिलोंगाई थ्लवेचर चर तोरिन कन सोम चेनी चो ओ हां दोस्तों मैं जाना चाहूंगी अगले गीत की ओर। अगला गीत ये है फिर कभी। ये गीत आप सबके लिए मेरी ओर से जाता है।

tok kan ni hi ron ti ni adikang chu chu in po ni se vi kong ten he ron chang ta jo o in in au chua klo tling ta kan lom tlang hle in ka shabok o or yahan pe sizit ki or se arjumon pui please tu nai play hi a hla le filming emo min lo text thing em ron ti a kron tum don nya o ha and karon ing lawang karon pedon te niya next git ki और जाने का अब समय आ गया है। और दोस्तों इसी तरह से हम नेक्स्ट गाने की ओर चलते हैं। ये गीत जो है ये भी बहुत बहुत सुंदर है, आप सबको भी पसंद आएंगे मुझे ऐसा लग रहा है। दिस इज अनदर सॉन्ग जो मेरे बहुत बहुत मनपसंद के हैं। ठीक है दोस्तों, आप सबके लिए लीजिएगा आनंद।

दोस्तों, न चाहते हुए भी अंतिम कैद की ओर जाने का अब समय आ गया है। मैं SMS की ओर जाना चाहूंगी। जेल अल्जाम की ओर से इन्होंने कहा है, आज आरजे मा मोन पे क्लोंग तकिन होंगंग जे ओ ngai om nu nu thai si re re lu tok thin o ron te a re re al dawin lo come back thwa thwa yang se o ron te ne ka wa lom takem jail al za manang po dam takin lo om ze la irani nen po in lo win ngai thla zel ulamo chuan e klo let le thwa yang pathian in rem ati vele o हाँ, इसी तरह से दोस्तों, आपकी आरजू मोहन पुरी 100.7 FM जो ओ में आप सबके साथ आया समय अंतिम गीत की ओर जाने का, और इस गीत के साथ

साथ आप सबसे मुझे विदा लेना पड़ रहा है। मैं कहना चाहूंगी आप सब हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और इसी तरह से हमारे और आपकी मुलाकातें 100.7 एफएम जोई में होती रहेगी। और ये जो गीत है, एक और गीत, इसे मैं आप सबके बस तेरा साथ है ना, ये गीत जो है मैं आप सबके लिए छोड़ जाऊंगी, और इसी के साथ साथ आप सबको बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर बोलूंगी। एंड सी जिद का थिंग हिलो मोई नंबर कल अथलान के नकलो पियंग से। ओ हाँ, इसी तरह से चलते हैं, इस छोड़ जाती हूँ ये गीत आप सबके लिए, खूब आनंद लीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड शुभ शुभ शुभ रात्रि।